संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा।

और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।

रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारामा अने कमाई ना बारामा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। जीवन से जोड़ती प्राकृतिक खेती। जी हाँ किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, कैसे हमारी जो प्राकृतिक कृषि है वो कैसे हमें जीवन से जोड़ती है। जो प्राकृतिक खेती है ना केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारे पशुओं के, हमारी जमीन के और हमारे जल स्रोतों को भी शुद्ध करती है। किसान साथियों, हम जितना प्राकृतिक खेती करेंगे उतना ही हम हमारी मृदा को, हमारे वातावरण को और हमारे जल स्रोतों को हम बचाए रखेंगे। किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि आप में से काफ़ी किसान जो हैं, जो अभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो किसान अभी जो रासायनिकों खेती में ज़्यादा रासायनिक खेती कर रहे हैं, वो किसान भी धीरे धीरे अपना रुख प्राकृतिक खेती की ओर करेंगे। साथ ही किसान साथियों, हमारा जो झाबुआ का केवीकी है, इसके माध्यम से भी आप बहुत सी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत से जो खाद हैं जो हमारे

0: पशुओं से हम बना सकते हैं, पशु मूत्र, पशु मल से जो खाद बनाए जा सकते हैं उनकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह पूर्णतः मुफ्त ट्रेनिंग है, इसके लिए आपको सिर्फ केवीके में आकर यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया है और अपने खेतों में इसका प्रयोग भी करेंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहां गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। दोस्तों, कुछ सफर कार्यों से शुरू होते हैं और कुछ सफर अपनी पहचान की तलाश से। आज हमारी मेहमान की कहानी भी कुछ बिल्कुल ऐसी है। सुजानगढ़ की मिट्टी से निकली, रेणुकूट की प्रकृति की गोद में पली बड़ी, बनस्थली विद्यापीठ की गोल्ड मेडलिस्ट, एक समर्पित माँ, रिसर्चर, गेस्ट फैकल्टी और जैन दर्शन की गहरी आध्यता, अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को परिवार को समर्पित करने के बाद उन्होंने दोबारा किताबों का हाथ थामा और PhD तक का सफर तय किया। जैन फिलोसफी, हेरिटेज, म्यूजियम्स और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पर उनका काम न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि हमारी परंपरा को नए नजरिए से देखना भी सिखाता है। आज हम सब उनसे उनकी सिर्फ अचीवमेंट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि उनकी सोच, उनके सफर और उनके जीवन के रंगों की बात करेंगे। तो बहुत ही गर्म जोशी के साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अलका सिंघी जी का। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप?
1: सबसे पहले थैंक्स आपको मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़ने के लिए।
0: जी जी जी, हम SN रेडियो पे आपको इनवाइट करके बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने हमारे श्रोताओं को बताया कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है और अपने पीक ऑफ द करियर में आपने सब कुछ गिव अप करके दोबारा से अपनी इनिंग्स शुरू करी है, तो वहीं से मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैम। आप गोल्ड मेडलिस्ट रही और उस दौर में जब आप अपना करियर शुरू कर सकती थी, उसे पीक पर ले जा सकती थी और क्या नहीं हासिल कर सकती थी, तब सामाजिक सोच की वजह से आपको अपने सपनों को रोकना पड़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने सच में रुके या बस वो अपना सही वक्त का इंतजार कर रहे थे?
1: हाँ, 1997 में मैंने अपने दादाजी से अपने करियर के बारे में बात की थी, तो उन्होंने यह बोला और मुझे समझाया कि हमारे घर की बहू बेटियां काम काजी हो तो समाज घर को आर्थिक दृष्टि से कमजोर समझता है, तो मुझे मेरे सपनों को लगाम देना पड़ा। खैर, 2025 में मैंने अपनी PhD पूरी की, अपने सपने साकार किए, और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पाती हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने सपनों को जरूर पूरा करना चाहिए। जीवन हमें मौका देता है, बस हमें उस मौके को पहचानना आना चाहिए।
0: क्या बात है मैम, आपको कैसा फील हुआ था जब आपको गोल्ड मेडल मिला था? आपको अपने ऊपर नाज हुआ था, अपने ऊपर यकीन हुआ था? उस समय गोल्ड मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि उस समय मार्क्स इतनी इजीली नहीं मिलते थे। जो सच में मेहनत करते थे बच्चे, जो सच में आउटस्टैंडिंग बच्चे होते थे, उनको वो मेडल दिया जाता था। तो मैं बस एक फीलिंग चाहती हूँ कि मैं भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लॉ में, बट मेरा जमाना अलग था। बट मैं उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत रेवरेंस से देखती हूँ जो उस जमाने में ये उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। तो वो किस तरह का मंजर था आपके लिए?
1: हाँ, मुझे जब गोल्ड मेडल मिला तो मुझे, मेरा शादी हो चुकी थी मेरी, और मेरी ये न्यूज पापा के थ्रू आई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी। नया नया घर था, ससुराल नया नया था, सब नए नए थे, तो मतलब वो खुशी शेयर किससे करूं समझ नहीं आ रहा था। हस्बैंड रात को दिन से बजे आए थे।
0: जी जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इससे?
1: हाँ, खुशी बहुत हुई थी
0: जी। और आपके हस्बैंड ने क्या कहा फिर?
1: अब इतनी पुरानी बात हो गई, याद नहीं, लेकिन वहाँ उनको भी बहुत खुशी हुई होगी।
0: जी जी, हाँ, उनको भी गर्व हुआ होगा आप पे। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर रहा होगा आपके जीवन में। बहुत कंग्रेचुलेशन मैम आपको। आगे चलते हैं, आप नेचर से बहुत जुड़ी हुए हैं, आप बार बार नेचर की बात करते हैं, नेचर को बहुत बड़ा एक टीचर मानते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर जंगल, पहाड़, प्रकृति बोल सकते हैं आपसे, बात कर सकते हैं, तो आपको वो आपके जीवन का कौन सा लेसन देते थे, अगर आप वो साझा करना चाहें?
1: हाँ, प्रकृति हमें धैर्य रखना सिखाती है, हर परिस्थिति को कैसे जीना है उसका सामना करना सिखाती है। वह यह भी सिखाती है कि जीवन निरंतर चलने और आगे बढ़ने का नाम है, और नेचर ने ही मुझे धैर्य रखना और निरंतर आगे बढ़ना सिखाया।
0: जी, कोई ऐसा वाक्य अगर आप साझा करना चाहें, आपके बड़े होते समय जब आप इन पहाड़ों और जंगलों के बीच बड़े हो रहे थे, तो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर मंजर जो आप साझा करना चाहें, या कोई एक ऐसा वाक्य जो आज भी आपके जहन में ताजा है कि याद आता है तो खुशी भी होती है और यू नो नॉस्टैल्जिया भी हिट करता है?
1: ऐसा मतलब मेरी जब सगाई हुई थी, जब एंगेजमेंट हुई थी, तो नेचर को देख के ऐसे लगा कि हाँ, क्योंकि नहीं नहीं उस वक्त जब एंगेजमेंट होना और बात करने के लिए कम मिलता था, आप समझ सकते हैं, उस टाइम फोन होते नहीं थे, नहीं आती और जाती थी, तो मतलब ऐसे नेचर को देख के ऐसे लगता था कि हवा में उड़ रही हूँ। और जब शादी होके जब मैं आई तो मतलब दुख भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जैसे नेचर आगे बढ़ता है, एक नदी बिना रुके भी आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी ऑनेस्टी और कितनी सरलता से आपने इतनी इनोसेंट बात साझा की, बहुत ही खूबसूरत। कोई कोई पर्टिकुलर गाना जो आपके जहन में आता हो, जो आप गुनगुनाती थी उस समय?
1: मुझे मतलब बारिश

0: खूबसूरत गीत है ये। इसने मेरी भी बहुत सारी यादों को ताजा कर दिया। मेरे बड़े होने के समय का गाना है ये और हम खूब गुनगुनाते थे इसको स्कूल कॉलेज में। तो थैंक यू मैम इतना खूबसूरत गीत की फरमाइश करने के लिए। आगे चलते हैं। आपने कई सालों बाद, जैसे अभी आपने बताया कि शादी के बाद आपने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, और तब तक दुनिया बहुत चेंज हो चुकी थी, सब कुछ डिजिटल हो गया था, और डिजिटल दुनिया में पढ़ाई के मीडियम्स, पढ़ाई के मोड, पढ़ाई का तरीका सब कुछ अलग था। तो उस सब के बीच रहना, उसमें अपनी पीएचडी को पूरा करना, ये सफर कैसा था, कितना चैलेंजिंग था, ये कैसे आपने डिसाइड किया? और वो लोग जो आज अपने सपनों को दफना देते हैं डर के कारण, इन सब कठिनाइयों के कारण, इन सब चैलेंजेस के कारण, तो उनको आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि अपने सपनों को पोस्टपोन ना करें?
1: जब मैंने वापस स्टडी स्टार्ट की थी तो शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आ चुके थे। प्रोजेक्ट बनाना, मतलब सब कुछ डिजिटल हो गया था। कुछ भी ढूंढना होता था ऑनलाइन ढूंढना होता था। मुझे ऐसे लगा एक बार कि मैं ऐसे कैसे करूंगी, फिर मुझे लगा नई चीज सीखने में तो मजा ही आएगा। तो मेरे बच्चे जब बड़े हो गए थे तो उनकी मदद से, मेरे साथ जो लोग पीएचडी कर रहे थे उनकी, वो थोड़े यंग बच्चे थे, उनकी मदद से मैंने काफी कुछ सीखा। प्रेजेंटेशन सीखी, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सब सीखा और बहुत मजा आया। और मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि उम्र तो एक नंबर है, सपने पूरे करने के लिए कभी देर नहीं होती। जीवन की राह बदलनी हो या अपने जुनून को पूरा करना हो तो जरूर करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो गई है। और जीवन में मुश्किलें ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, बस उन्हें सॉल्व करना है और जीवन में अपने सपनों की तरफ बढ़ना है।
0: बिल्कुल, निरंतर बढ़ते जाना है। और बहुत ही खूबसूरत अगेन आपने बात साझा की अपने जीवन से। बहुत प्रेरणादायक ये बात है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते वो चीजें जो उनके सपने रहते हैं, बट उनसे आगे बढ़ना और उन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना, उसी में आपकी जीत है। और उसके बाद जो जीत होती है उसका मजा ही कुछ और होता है। जब आपको पीएचडी अवार्ड हुई होगी तो वो किस तरह का एक खुशी का मोमेंट हुआ होगा आपके लिए, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। आपने जैन फिलोसफी को भी बहुत ही गहराई से स्टडी किया है, म्यूजियम्स को, हेरिटेज पर, इन सब पर आपने बहुत रिसर्च की है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है ये। तो अगर जैन धर्म को सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ, जैसे एक तरीका जीने का, इस तरह के रूप में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझाना चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट थ्रो करें, जैन धर्म के बारे में और आपके इसको परसीव करने के तरीके के बारे में।
1: हाँ, जैन धर्म

0: रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, एक आर्ट है जो हमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखती है। हमारी इच्छाएं व मन बहुत इधर उधर भागता है, पर हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सिखाता है। प्रकृति को सेव करना सिखाता है। जीरो कार्बन लाइफस्टाइल जैन सिद्धांत सिखाते हैं, जिससे हम वर्तमान का जो समय है, इस समय में जितना प्रदूषण हो रहा है, हम वो सब रोक सकते हैं उस लाइफस्टाइल को फॉलो करके।
1: जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जीरो कार्बन जो आपने अभी वर्ड यूज किया, जीरो कार्बन।
0: हाँ, जीरो कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब है, जैसे

0: को देखें, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको लगेगा वो जीरो कार्बन मतलब प्रोड्यूस उनकी लाइफ है, क्योंकि जैसे दिगंबर तो वस्त्र पहनते ही नहीं है, खाना वो अपने लिए बनाते ही नहीं है, पानी भी उनका लिमिट है कि बस इतना ही यूज करना है, तो ये सेली मतलब एनवायरमेंटल को तो सेव करती ही है।
1: बिल्कुल, हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, जीरो कार्बन लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी एक हमारे देश में एक ऐसा धर्म है जो सालों से युगों से उसको जीता आ रहा है। ये बहुत ही एक गर्व फील करने वाली बात है। क्या मैम आपके जीवन में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप अपनाती हैं, मेडिटेशन हुआ या इसी तरह की कोई ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपके धर्म से रिलेटेड हैं, अगर आप वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें तो वो क्या होंगी, कुछ बेसिक चीजें?
0: मैं आपको बताती हूँ, मेरे कपड़े के नियम है, मैं साल में एक लिमिट कर रखी है, मैं उतने ही कपड़े खरीदती हूँ, उससे ज्यादा कपड़े नहीं खरीदती हूँ। सेकंड चीज मैं फॉलो करती हूँ कि मैं सन सेट के बाद, जब सूरज डूब जाता है उसके बाद मैं खाना न खाऊं, ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जो मैं रखती हूँ। ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी है थोड़े हेल्थ से भी रिलेटेड है, और थोड़ा नेचर सेव करना इसके लिए भी मैं सोचती हूँ। जैसे कुछ चीजें हैं कि जैसे मैं गार्डन में चलूँ तो मैं घास पे ना चलूँ, क्योंकि उनमें भी जीवन है, तो वो मैं बचना मतलब बचने की कोशिश करती हूँ।
1: बहुत इंटरेस्टिंग जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग मैं जिनको जानती हूँ वो जैन ना होते हुए भी आजकल सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं, और उनका रीजन भी वही है कि हेल्थ की वजह से, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स डाइटिशियन सब लोग ही कह रहे हैं कि सनसेट से पहले खाना खत्म करें, इससे आपका डाइजेशन पूरा प्रॉपर हो जाएगा जब तक आप सोएंगे और वेट गेन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में इसको फॉलो करते हैं और मैजिकल चेंजेस हैं इसके, और जैन धर्म इसको सालों साल से प्रैक्टिस करता आ रहा है। तो वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल तरीका है जीने का, बट कभी ना कभी सरल चीजें ही सबसे डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आपका अगला फरमाइशी गीत फिल्म हाईवे से, माही वे।

0: वंस अगेन एक बहुत ही उम्दा गीत, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, बहुत ही प्यारी चॉइस है मैम आपकी। थैंक यू सो मच इस गाने की फरमाइश करने के लिए। वंस अगेन मैं भी अपनी यादों में चली गई और बहुत ही मजा आया ये गाना सुन के। आगे चलते हैं। आपने हमें बताया कि आपने बहुत सारे राजस्थान के जैन मंदिरों, उनकी कला, उनके इतिहास, उनके दार्शनिक महत्व को बहुत गहराई से समझा है अपनी रिसर्च में। तो क्या कोई एक जैन मंदिर है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें, या कोई तीर्थ जिसको देखकर आपको लगा कि ये बस एक मंदिर नहीं है बल्कि एक जीवित ग्रंथ की तरह है, और कोई एक ऐसी सीख जो आपने वहां से सीखी हो जो आप साझा करना चाहें?
1: राजस्थान में कई जैन मंदिर हैं, जैसे रणकपुर जो अपने माउंट आबू के पास है, उदयपुर माउंट आबू के पास है। करौली में भी एक श्री महावीर जी मंदिर है। सभी टेम्पल की बनावट और वास्तुकला बहुत ही बेजोड़ है, और रणकपुर तो विख्यात है मंदिरों के लिए, जैन मंदिरों के लिए। पर मैं इन सब में, मुझे अजमेर में एक सोने जी की नसिया, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं, वो उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। सोने का काम इतना सुंदर, इतना बारीक, ऐसे लगता है जीवंत हम अयोध्या नगरी देख रहे हैं, क्योंकि वो ऋषभ देव आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर जैन, प्रथम तीर्थंकर हैं जो, उनके बना हुआ है। और उसमें अयोध्या नगरी का वर्णन, मतलब इतना सुंदर तरीके से कैसे उनके भगवान का कल्याणक, उनका जन्म कल्याणक, उनकी कैसे उनकी दीक्षा हुई, उनको केवल ज्ञान के सेवा, उनका सबका विवरण दिया हुआ है, और बड़े ही सुंदर में। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये है कि राजस्थान की भंडारी भाषा में उस दीवारों पे जो लिखी हुई है कविताएं, या जो ग्रंथ, साक्षात ग्रंथ लिखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की लिपि या भाषा को उन्होंने वहां सेव कर रखा है, जिससे हमें लोकल चीजें पता चलती हैं। इस तरह से वो एक जैन ग्रंथ है, और मुझे मुझे वहां से एक सीख ये मिली कि हमें हमारी जड़ों से हमें जुड़ा रहना चाहिए। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हमें हमारी भाषा को नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारी भाषा कैसी भी हो, उसको मतलब सीखना चाहिए। आजकल यूथ जैसे अपनी जो मदर टंग होती है, जैसे मारवाड़ी या बिहारी में मगधी चलती है, वो बोलना कम पसंद करते हैं। उनको इंग्लिश, या हिंदी वाले भी हैं तो उनको हिंदी में बात करना नहीं पसंद है, उनको इंग्लिश में बात करना पसंद है। पर मैं ये कहती हूँ, हमें हमारी मदर टंग को हमेशा हमें सीखनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए।
0: बिल्कुल। कोई ढूंढाड़ी में कोई गीत या कोई लोकगीत जो आपको बेहद पसंद हो, जो आप थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुनाना चाहें, या कोई ऐसा ही वाक्या हमारे साथ साझा करना चाहें ऐसे ही किसी
1: ढूंढाड़ी
0: मंदिर के बारे में?
1: भाषा में जो लिखा हुआ है, मैं मतलब मुझे याद नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ
0: बिल्कुल
1: पर मुझे
0: बिल्कुल
1: याद नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और अभी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पढ़ भी नहीं सकती, मतलब वो मंदिर ही में ही जाके पढ़ सकती हूँ
0: जी। कोई गीत अगर आप
1: मैं।
0: गुनगुनाना चाहें।
1: गीत में ढूंढाड़ी भाषा में मुझे अभी तो नहीं मिल सकता।
0: अच्छा, कोई बात नहीं। मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड अगर आपको मन करे तो आप गुनगुना दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत
1: ठीक
0: प्रमोट करना चाहते हैं इस बात को कि सच में आपकी रूट्स बहुत जरूरी हैं, आपकी भाषा बहुत जरूरी है, आपकी भाषा, आपकी लोकल भाषा आपकी पहचान है। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, हम इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हैं, बट हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आजकल के स्पेशली, क्योंकि हमारी जनरेशन तक तो लोग फिर भी कनेक्टेड थे, अब जो पिछले 10 साल, ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आजकल के स्पेशली, क्योंकि हमारी जनरेशन तक तो लोग फिर भी कनेक्टेड थे, अब जो पिछले 10 सालों में बच्चे आए हैं वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, और आगे आने वाले 10 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उनको लोकल भाषाओं का नाम तक नहीं पता होगा, उन्हें बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो हम चाहेंगे कि अगर हम प्रमोट कर सकते हैं अपने रूट से जुड़ना, अपनी लैंग्वेज से जुड़ना अपने रेडियो के माध्यम से, तो वो जरूर करें। तो इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत जो आप ही की फरमाइश पे है, ये जीवन है इस जीवन का, फिल्म पिया का घर।

जीवन के फलसफे जैसा ये खूबसूरत गीत। आगे चलते हैं। आप कम्युनिटी सर्विस से भी बहुत जुड़ी हुई हैं मैम, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई भी जो धर्म है उसकी असली पहचान सिर्फ मंदिर तक सीमित होती है या इंसान के व्यवहार और उसकी सेवा में नजर आती है?

0: धर्म का अर्थ एक तरह से कर्तव्य है। मनुष्य का आचरण व मानवीय मूल्य ही प्रमुख होते हैं। मेरे ख्याल से प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो समाज में आया है और उसने समाज और प्रकृति को अपने लिए प्रयोग किया है, तो वो तो उसे वापस धरती को, समाज को देना चाहिए। जीवन सभी जी लेते हैं, पर जीवन का उद्देश्य धरती को कुछ देना हो या समाज के लिए कुछ काम करना हो तो करना चाहिए, और आपको यदि मौका मिल रहा है तो जरूर करना चाहिए। अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सेवा करते हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा साझा करना चाहें आपकी कम्युनिटी सर्विस के बारे में?
0: मेरे पास में एक अच्छी बस्ती में स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं। वो गवर्नमेंट से तो जुड़ी है, पर गवर्नमेंट ज्यादा, मतलब आप जानते हैं गवर्नमेंट की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, तो मैं वहाँ पे हम फल आहार देते हैं जिससे बच्चे ज्यादा आए, और उन बच्चों की जब शादी होती है तो वो अपनी बच्चियां वो रोजगार अपना खुद कर सके, उसके लिए सिलाई मशीन, हम हर बच्ची को शादी में दहेज में एक सिलाई मशीन देते हैं जिससे वो अपना रोजगार चला सके, अपना घर चला सके।
1: बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। और सच है कि किसी भी धर्म का अल्टीमेट जो मतलब है, मकसद है, वो इंसान को इंसानियत से मिलाना है, कृतज्ञ होना है, मृदुल होना है, और जीवन में कुछ छोड़ के जाना है किसी और के लिए। अपना जीवन तो हर कोई जीता है, जानवर भी जीता है, बट अगर आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते किसी और के लिए, किसी और का जीवन थोड़ा सा और सुंदर नहीं बना पाए, तो वो जीवन मेरे हिसाब से व्यर्थ है। और उस धर्म का भी कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, अंत कोई एक रीजन नहीं है उसकी टीचिंग्स का, उसकी लर्निंग्स का। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने साझा किया। आगे चलते हैं मैम, आपका एक बहुत खूबसूरत सा सपना अभी भी बाकी है, जहां पे आप चाहती हैं कि युवाओं के लिए एक जैन कल्चर के ऊपर बुक लिखें, जैन कल्चर उसकी फिलॉसफी से जुड़ी हुई एक बुक लिखें। तो इस किताब का पहला चैप्टर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक सेंटेंस से शुरू होना हो, तो वो क्या होगा?
0: हाँ, मैं यही कहूंगी कि मेरा पहला चैप्टर ये होगा कि अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये जैन धर्म कैसे सिखाता है।
1: जी, क्या आपने ये किताब लिखना शुरू की है अभी तक, या कुछ सोचा है कब तक लिखना चाहेंगी?
0: अभी अभी बस लिखने के लिए सोच रखा है, थोड़ा समय मिले फिर मैं लिखूंगी।
1: बिल्कुल, बहुत जल्दी आप लिख पाएं ये हमारी आशा है, ये हमारी विश है आपके लिए पूरी SN रेडियो फैमिली की तरफ से। आज का मेरा आखिरी सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये है कि अगर जिंदगी को मौका मिले, आपको जिंदगी में आपको एक मौका दे जिंदगी कि आप अपनी 25 साल वाली अलका जी से मिल सकें, और सिर्फ 1 मिनट के लिए उनसे मिलके उनसे कुछ कह सकें, तो क्या आप उन्हें ये यकीन दिलाना चाहेंगी कि उनके सपने बस अपना वेट कर रहे हैं, अपने मौसम का वेट कर रहे हैं और जरूर पूरे होंगे? और इसके अलावा आप उस 25 ईयर्स की अलका से क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं यदि पीछे मुड़ के खुद से मिलूंगी तो मैं यही कहूंगी कि समय आएगा, हर चीज का समय आता है, वेट करो, हर इच्छाएं पूरी होगी। और मैं आज भी, मेरी काफी और भी है इच्छाएं, और बहुत सारी ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हो मैं बुक लिखूं और लिखूं, पर सही मौके का, सही वक्त का, या कुछ भी कहें वैसा इंतजार है, और बस यही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो सही वक्त जरूर आएगा। आपको जीवन में हर समय हर चीज समय पे मिली है, बट मिली बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा है, तो ये भी जरूर होगा। अगर आप, जैसे मैंने कहा था, अब अगर कोई गीत गुनगुनाना चाहे, कोई सा भी, बड़ी ढूंढाड़ी में या हिंदी में, कोई भी आपका फेवरेट गीत, बिकॉज हमारा जो चैनल है, जो SN रेडियो का जो क्रक्स है, जो कोर है, वो गीतों से जुड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि लोग गाएं, गुनगुनाएं और खुश रहें। तो अगर आप एक लाइन गुनगुनाना चाहें किसी भी गीत की, तो मैं, हमारे श्रोता भी बहुत खुश हो जाएंगे और मैं भी बहुत आभारी होंगी आपकी।
0: हाँ, 2 मिनट सोचती हूँ।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तुम बिना साथ मेरा हम बहार,
1: जब जी
0: लाइन
1: मैं भी
0: याद नहीं आ रही मुझे।
1: जब कोई बात बिगड़
0: बिगड़ जाए, हाँ ठीक है,
1: जाए
0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आए, देना साथ मेरा उम्मीद
1: नवा बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत नाम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप बहुत सरल हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत मेहनती हैं, जितना मैंने आपको जाना है। और मैं जरूर चाहूंगी कि आपकी जीवन की सारी ख्वाहिशें, सारे ड्रीम्स पूरे हों, और वो किताब जिसकी आपने बात की है वो जरूर छपे, जल्दी छपे, ताकि एक बार फिर हम कनेक्ट हों और उसके बारे में खूब सारी बातें करें। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। SN रेडियो की पूरी टीम की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस, धन्यवाद और बहुत आभार।
0: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों, जैसे हमने अलका जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो ढूंढाड़ी में हमें कुछ दो लाइन सुना दें, तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद हमें बहुत ही खूबसूरती से दो लाइंस रिकॉर्ड करके और उनका ट्रांसलेशन हमारे साथ साझा किया। मैं चाहूँगी कि अब आप वो दो लाइनें सुनें और उनका जो क्रक्स है, उनका जो कोर है और उनकी जो खूबसूरती है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।
2: सुगणा पाप पंक पर हरिए, पाप पंक पर हरिए, दिल स्यों वो सी रावे अद भार, इह विधि चिज आत्म निस्तार, प्राणातीत पात प्रथम अग अख्यो दूजो मिर सावाद, अद दानत तित्तो अध कहिए चौथो मिथुन विसात। इसका अर्थ है कि प्रथम पाप मनुष्य का अपने प्राणों का हनन करना है, दूसरा पाप झूठ बोलना है, तीसरा पाप अदाता दान, किसी को दान देने के बाद में पश्चाताप करना है, और चौथा विषाद देने वाला मतलब अह ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन को तोड़ना है।
1: अलका जी से आज की बातचीत में हमें ये एहसास हुआ कि सपने कभी पुराने नहीं होते। कभी कभी जिंदगी हमें थोड़ा सा रुकना सिखाती है, ताकि जब हम दोबारा चलना शुरू करें तो मजबूती और समझ के साथ आगे बढ़ें। अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अनुभव, अपनी सोच और जैन दर्शन की इतनी खूबसूरत बातें हम सभी के साथ साझा की। दोस्तों, अगर आज की बातचीत ने आपके दिल को छुआ हो तो ये जरूर याद रखिए, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सही वक्त पर वो खुद आपको आवाज देते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो पर। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक नई कहानी और जिंदगी के कुछ नए रंगों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सीखते रहिए और दिल से जीते रहिए। नमस्कार।
3: सूरज।

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। आइए दोस्तों, आज आपको बताते हैं एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में, जो भारत रत्न इंजीनियर थे। कर्नाटक के कोलार ने देश दुनिया को बेहिसाब सोना दिया। कोलार गोल्डफील्ड से अंग्रेज कितना सोना निकाल कर ले गए कोई नहीं जानता, लेकिन जब अंग्रेज दोनों हाथों से लूटने में लगे थे, तब उसी कोलार की उर्वर भूमि पर एक गुदड़ी के लाल का जन्म भी हुआ। उनके पिता विद्वान थे, उनका ज्यादा समय धर्म ग्रंथों और तीर्थ यात्राओं में लगता था। परिवार में अभाव थे, छह भाई बहनों में दूसरे नंबर का ये बालक कुछ खास था। वो अभाव का साया पढ़ाई पर नहीं पड़ने दे रहा था। घर में ही बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, पर जब लगा कि बच्चे तेज हैं तो स्कूल भेजना जरूरी हो गया। स्कूली पढ़ाई के लिए परिवार गांव छोड़कर चिकबल्लापुर आ गया। सरकारी स्कूल में उस बालक ने टॉप करना शुरू कर दिया। जी हां, मां ने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बेटे को उसके मामा के पास बेंगलुरु भेज दिया। बेटे ने मैट्रिक में पूरे मैसूर राज्य में टॉप करके दिखाया। मां ने समझ लिया कि बेटे को अब तो रोकना ठीक नहीं। टॉपर को सेंट्रल कॉलेज में इंटरमीडिएट में बहुत ही आसानी से दाखिला मिल गया। पल पल पढ़ाई करते हुए टॉपर पर कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल चार्ल्स वॉटर्स की निगाह पड़ गई। प्रिंसिपल ने पता लगाया कि यह छात्र तो बहुत ही मुश्किलों से गुजरते हुए पढ़ाई कर रहा है। पैसे बचाने के लिए बेंगलुरु के एक छोर पर रहता है और दूसरे छोर पर कॉलेज है, पर एक तीसरा जरूरी छोर भी है जहां वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है। सुबह आंख ट्यूशन वाले घर में ही खुलती है, जहां वो सुबह ही बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने डेरे पर आना पड़ता है, जहां भोजन करते ही कॉलेज का वक्त हो जाता है, कॉलेज से छूटकर फिर डेरे पर भोजन और देर रात से पहले ही ट्यूशन वाले घर पर पहुंचना पड़ता है। सारी दूरियां पैदल ही तय करनी होती थी। अब कमाल देखिए, क्या मजाल कि कहीं भी पहुंचने में एक मिनट की भी देर हो जाए, कहीं कोई बहाना नहीं, चेहरे पर कोई शिकन का एक कतरा तक नहीं। अंग्रेज प्रिंसिपल छात्र की इस दुष्कर दिनचर्या सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे छात्र को तो जरूर सहायता देनी चाहिए। जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए किसी से पैसे नहीं मांग रहा, खुद मेहनत से खर्च निकाल रहा है, उसे तो कुछ ऐसा देना चाहिए जो उसे ता उम्र उसके काम आ जाए। प्रिंसिपल ने बहुत सोच विचार करके अपने संघर्षशील छात्र को वेबस्टर डिक्शनरी भेंट की। पहली बार किसी ने ऐसा उपहार उन्हें दिया था। अब तक भेंट में ज्यादातर मुड़ी तुड़ी हुई फटी हुई किताबें ही मिला करती थी, पर अब हाथों में एक नया मोटा चमकदार शब्दकोश था। तमाम पुरानी किताबों के बीच सिरमौर। प्रिंसिपल साहब की भलमन साहत ने छात्र को भाव विभोर कर डाला। उत्साह एक ऐसे ज्वार की तरह जागा कि ठान लिया, प्रिंसिपल साहब ने पढ़ाई के लिए दिया है तो वाकई पढ़कर कुछ अच्छा बनकर दिखा देना है। उपहार हुनरमंद मानकर उम्मीद से दिया है तो खरा उतर कर भी दिखाना है, फिर क्या। छात्र ने ऊंचे अंकों से कॉलेज पास करके दिखा दिया।
प्रिंसिपल साहब पीछे लग गए कि तुम्हें शिक्षा निदेशालय में लगा देता हूं, तुम्हारे संघर्ष के दिन पूरे हो गए। पर छात्र ने कहा, सर अभी और पढ़ूंगा, पक्की नौकरी में लग गया तो मुश्किल हो जाएगी, सर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। सुखद संयोग था कि पुणे में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति का इंतजाम हो गया। पुणे पहुंचते ही ख्याति फैलने लग गई उनकी। देश के नामी गिरामी लोग जानने लगे कि अद्भुत विद्यार्थी मोक्ष गुंडम विशेश्वरैया ने 3 साल का पाठ्यक्रम 2.5 साल से भी कम में ही तय कर डाला, फिर टॉप किया तो जेम्स बर्कले पुरस्कार भी ले लिया। मात्र 23 साल की उम्र में बॉम्बे लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद से बेमिसाल इंजीनियरिंग सेवा की शुरुआत हुई। देश में उनके नाम का डंका बजने लगा। कहीं पेयजल आपूर्ति, कहीं बाढ़ की रोकथाम, तो कहीं सिंचाई सुविधा, पूरा देश जान गया कि हमारे पास एक ऐसा माहिर इंजीनियर है जो नदियों पहाड़ों की भी दशा दिशा बदल देता है, जो बाढ़ और सूखे का इलाज भी जानता है। 15 सितंबर को जन्मे मोक्ष गुंडम विशेश्वरैया जी इस देश के सबसे काबिल इंजीनियर साबित हुए। उनके जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और उन्हें भारत में ही नहीं विदेशों में भी खूब याद किया जाता है। पूरी सादगी और विद्वता की महानता के साथ अनेकों पद और सेवाओं को सुशोभित करने वाले पूरे 101 साल जीवित रहने के बाद विशेश्वरैया जी अंत तक अपने प्रिंसिपल की खास भेंट शब्दकोश को दिल से लगाए रहे। अब ये शब्दकोश मुडेन हल्ली के संग्रहालय में इस संदेश के साथ शोभायमान है कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई उपहार दिया जाए तो कुछ ऐसा हो जो प्रेरणा से बस भर दे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: दो दोस्तों में लड़ाई हो रही थी, उन लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई। तीसरा बोला, अबे क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? पहला बोला, जब मैं लहसुन प्याज नहीं खाता तो इसने चिकन में डलवाया क्यों? एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था, वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे बेटे। वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आध्यात्मिक साधना केवल सन्यासी लोगों के लिए होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सन्यासी और गृहस्थ दोनों ही आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर भर समझने की जरूरत है। इनके बीच के जो अंतर को समझा जाए तो पारिवारिक व्यक्ति के दो काम होते हैं, सन्यासी का केवल एक ही काम होता है। पारिवारिक व्यक्ति को परिवार का पालन पोषण करना होता है और उसका दूसरा कर्तव्य होता है बाकी मानव समाज के कल्याण के लिए भी काम करे। ऐसे में उसे संतुलित रूप से काम करने की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि कोई व्यक्ति महीने में 10,000 रुपए कमाता है और उसमें से 8,000 रुपए दान कर दे तो उसके परिवार में

तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। घर हमेशा अभाव में रहेगा और उसके परिजनों में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। उसे परिवार की समुचित देखभाल और मानव कल्याण के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है। अब समझने वाली बात यह है कि घर संसार चलाने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम तो देखिए करना ही होगा। छोटे बड़े संसार दोनों के बीच एक संतुलन रखना ही होगा। अब ये कर्तव्य एक गृहस्थ का है, सन्यासी का नहीं। सन्यासी के पास तो जो कुछ भी आता है वो उसे पूरा का पूरा संसार में दान देना होता है। सन्यासी का ये कर्तव्य होता है। मनुष्य को सभी अवस्थाओं सभी उम्र में धर्म की साधना करनी चाहिए। सभी लोग अपने अपने काम करते जाएं, बस यही होना चाहिए। ये जो हमारी धरती है इसी पर स्वर्ग को उतार लाना संभव है। किसी अन्य स्वर्ग की खोज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग नरक जैसी अलग कोई दुनिया होती ही नहीं। इसी धरती पर स्वर्ग होता है और इसी धरती पर नरक। जब हम कर्तव्य कर्म को सभी के हितों के साथ जोड़ देते हैं तो उससे मिलने वाला आनंद स्वर्ग का सुख देने लगता है। जहां कोई किसी को परेशान करता है वहां नरक जैसा वातावरण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समान और संतुलित भाव से अपने आध्यात्मिक मानसिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते चलिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैंने एनर्जी के लिए गन्ने के रस से बॉर्नवीटा तक का सफर तय किया है। माचिस की डिब्बी वाले फोन से स्मार्टफोन तक का सफर तय किया है। मैंने वो समय भी देखा है जब तरबूज बहुत बड़ा होता था और गोल होता था, अब लंबा सा हो गया है और छोटा हो गया है। मैंने चाचा चौधरी से लेकर सपना चौधरी तक का सफर तय किया है। मैंने बालों में सरसों के तेल से लेकर जेल लगाने तक का सफर भी तय किया है। मैंने होली का हुड़दंग 15 दिन पहले से होली मनाने में और आज होली के दिन भी बस बेरंग सी होली लगने तक का सफर भी तय किया है। मैंने चूल्हे की रोटी में लगी हुई राख का भी स्वाद लिया है। मैंने 15 पैसे की आइसक्रीम से 150 रुपए के अल्फांसो के एक स्कूप का सफर भी तय किया है। मैंने दूरदर्शन से लेकर 500 निजी चैनलों तक का सफर भी तय किया है। मैंने सप्ताह में सिर्फ रविवार को आने वाली एक मूवी से आज हर वक्त आने वाली 50 मूवियों तक का सफर भी तय किया है। मैंने खट्टे मीठे बेरों से लेकर कीवी तक का सफर भी तय किया है। मैंने 50 पैसे घंटा किराए पे मिलने वाली छोटी सी साइकिल से आज कार का सफर भी तय किया है। संतरे की गोली से किंडर जॉय तक का सफर भी तय किया है। आज की पीढ़ी का दम तोड़ता हुआ बचपन मैं देख रहा हूं, लेकिन आज की पीढ़ी मेरे समय के बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट समय में रंगीन और बहुत अमीर बचपन जिया है। मेरे बचपन के समय को और बचपन के दोस्तों और आज के फेसबुक के मित्रों को फिर मिलते हैं।

आइए एक और मजेदार बात बताऊं। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, है ना, बरस रहा है चारों तरफ। नहीं भी बरस रहा हो तो उम्मीद तो है ही। तो सावन का महीने में क्या क्या होता है, किस किस के लिए सावन यानी कि बारिश क्या क्या मायने रखती है, जरा देख लें। सावन का महीना उस प्रेमिका की तरह होता है जो कभी अपने प्रेमी के लिए प्यार छलकाती है और कभी बेवफाई का सबब बनकर उसके सीने में आग लगा देती है। सावन का महीना बरसात का महीना होता है, क्यों फिर भी आग लगा देता है ना अचरज की बात। अब सावन में भी दो टकिया की नौकरी के आगे लाखों का सावन बस पानी ही भरता हुआ नजर आता है। महंगाई का जमाना है भाई, नौकरी बहुत जरूरी है, भरा हुआ पेट होगा तभी तो प्रेम प्रेम करने में मजा आएगा। भूखे पेट तो भजन भी नहीं हो पाता, प्रेम की तो ऐसी तैसी। फिर भी पवन जो है वो शोर करने का अधिकार रखती है और झूला झूलने वालों में मस्ती का रंग भर देती है। आई ये झूला क्या होता है, अब आज के बच्चे तो पूछेंगे कि ये झूला क्या होता है, क्योंकि बेचारे अपने कमरे से बाहर मोबाइल से नजरे कभी उन्होंने हटाई ही नहीं। बरसते पानी तो जरूर देखा लेकिन पेड़ों पर लगे झूले उन्होंने कभी नहीं देखे। अब ये एक बढ़िया आइडिया है, आज के शहरों में मॉल्स में पेड़ लगा के झूले लगाए जा सकते हैं। तो भैया होता क्या है कि सावन के महीने में जब बादल अपना पूरा प्यार उड़ेल देते हैं और जमकर बरसते हैं तो भैया गरीब आदमी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को बचाने की जुगाड़ में लग जाता है। बादलों की कड़क के साथ ही उसके सीने की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। वहीं कुछ लोगों के अंदर मयूर मस्ती से नाच उठते हैं, मंत्री हवाई दौरे करने लगते हैं, लोगों के दुख दर्द को बांटने में जुट जाते हैं, सरकारी ऑफिसेज में फाइलें मोटी होने लगती हैं क्योंकि वहां पर पकौड़ियां चाय मालपुए बाबुओं के चेहरे पर रंगत ला देते हैं। असली सावन तो इन्हीं लोगों का होता है भैया। उधर क्या होता है दूसरी तरफ बताऊं, शहर की सफाई व्यवस्था की ऐसी कम तैसी पोल खुल जाती है जब बरसात का पानी गटरों में घुस नहीं पाता और मकानों में घुस जाता है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसी बेवफा प्रेमिका की तरह सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं से बाहर ही नहीं आता। आस्तीन के सांप अपना काम करते रहते हैं, फिर भी हम लोग नाग पंचमी

दिल। दिल कोई घोड़े की नाल नहीं कि हर वक्त टक टक टक टक करता रहे। उसे नाजुक टहनियों की तरह होना चाहिए, ठीक उन पेड़ों की तरह जो तमाम घावों को भूलकर कुल्हाड़ियों के हत्थों में तब्दील हो जाते हैं। जो प्यार नहीं मिल सका उसे किताब की तरह ही बरतना ठीक है, उसके पन्नों को मोड़कर सिरहाने रख लेना चाहिए। अधूरे स्वप्न ऐसे ही तकिए के नीचे दबाकर रखे जाते हैं, उन्हें आंसुओं से हरा हरा नर्म नर्म किया जा सकता है। ऐसे सपनों को सुबह सुबह हेयर ड्रायर से सूखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टूटे हुए रिश्ते ऐसे साथ रखना चाहिए जैसे देवता रख लेते हैं दुनिया भर की प्रार्थनाएं अपने ड्रॉर में। कोई औरत तह करके अलमारी में रख लेती है अपने मर चुके आदमी की बुशर्ट। लिफाफे कभी नहीं जानते कि उन्हें किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें इजहार भी हो सकते हैं और मृत्यु की सूचनाएं भी। दिल को भी लिफाफों की तरह खाली खाली होना चाहिए, आंख को हमेशा राह देखनी चाहिए, ये मानकर चलना चाहिए कि कोई फड़कता हुआ परिंदा नहीं, दिल एक मरून रुमाल है। प्यार करते वक्त उसे सर पर भी बांधना चाहिए और घावों पर भी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दोस्तों, जब आप चल दें तो ये बात दिमाग में रखें कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही सेवा या एक ही उत्पाद नहीं होता, बल्कि एक दृष्टिकोण होता है, एक मेंटालिटी होती है, एक सोच होती है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी खातिर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और फिर आपको यह संसार को दिखाने की जरूरत होती है। आप सुपर फैंस को आकर्षित करते हैं, अपने पसंद करने वालों को आकर्षित करते हैं, वो मौखिक प्रचार करते हैं आपका। किसी विज्ञापन से ज्यादा आगे बढ़कर ऐसा होता है, ज्यादा गहराई तक होता है और ज्यादा जोश से होता है। प्रबल राय मुफ्त नहीं है। आप कुछ लोगों को दूर कर देंगे, वो आपको घमंडी और अलग थलग रखने का प्रयास करेंगे। यही जिंदगी है। अगर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो दूसरा नफरत करेगा। अगर आपकी कही बात से कोई भी विचलित नहीं हो रहा है तो शायद आप पर्याप्त जोर देकर बोल नहीं रहे हैं, यानी कि आप कुछ कहेंगे तो कुछ ना कुछ लोग तो विचलित होंगे। बहुत सारे लोग हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे उत्पाद हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स यानी कि हमारे प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों से कम काम करते हैं। वो अपमानित महसूस करते हैं क्योंकि हम उनकी प्रिय विशेषता को शामिल नहीं कर पाए। लेकिन हमें इस बात पर भी उतना ही गर्व है कि हमारे उत्पादन क्या नहीं कर पाते, जितना इस बात पर है कि वो क्या कर लेते हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे उत्पादन क्या कर लेते हैं पर ज्यादा जोर नहीं है। दोस्तों, क्या नहीं कर पाते उस पर ज्यादा जोर है। हम अपने प्रोडक्ट्स के, उत्पादों के डिजाइन सरल रखते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर जरूरत से ज्यादा जटिल होते हैं। ये बात तो ठीक है दोस्तों। अपना उत्पाद जो कुछ भी हो वो बिल्कुल सरल रखिए। सरल हमेशा सुंदर ही होता है, ये तय मानिए। अपने चारों तरफ कोई भी सरल चीज उठा के देख लीजिए, वो सरल होगी तो सुंदर ही होगी। बहुत ज्यादा विशेषताएं, बहुत ज्यादा बटन लगा दीजिए, बहुत ज्यादा दुविधा क्रिएट कर देते हैं ये सब। आपके फोन की ही बात ले लीजिए, जितनी ज्यादा सुविधाएं उसमें आप बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही जटिल होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और परेशान करेगा। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी को सरल बनाए रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि बहुत ही चीजें आसान हो जाती हैं और हम खुशी खुशी सरलता से जीवन जी पाते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: गब्बर ने बैंक मैनेजर से पूछा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? मैनेजर बोला, कितने भी रखे हो पर अभी तो 4,000 ही मिल सकते हैं, वो भी तुम्हारी आईडी होनी चाहिए, कालिया या सांबा की नहीं चलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और

हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: रक्स करती हुई लहरों का है जादू मुझ पर, रक्स करती हुई लहरों का है जादू मुझ पर, चांदनी देती है मौजों को हवा रात भर, हाय लब कांप गए और थी खामोश जुबां, हाय लब कांप गए और थी खामोश जुबां, हुए खुश रंग

रंग तेरे दस्ते ही ना रात गए। नमस्कार, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत शाम मुबारक हो आप तमाम सुनने वाले दोस्तों को। 90.8 FM रेडियो की तरंगों पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के इस रूहानी मोड़ पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हारती रॉय, और एक बार फिर दहलीज पर दस्तक दे चुकी हूं आपके सबसे अजीज प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ये जो हमारे भीतर एक खामोशी होती है वो अक्सर किसी और की आवाज बनकर बाहर क्यों आती है? जब दिल के जज्बात हद से बढ़ने लगते हैं तो वो शायरी का लिबास ओढ़ लेते हैं। अल्फाज से एहसास तक महज एक शो नहीं है, बल्कि ये आपके और मेरे दिलों के बीच वो पुल है जहां हम दुनिया की आपाधापी को भूल कर कुछ पल सुकून से गुजारते हैं। आज की इस महफिल में हम यादों की कुछ ऐसी पुरानी किताबों को खोलेंगे जिनकी खुशबू आज भी उतनी ही ताजा है। आज सुरों का कारवां कुछ ऐसी राहों से गुजरेगा जहां मोहब्बत का सुकून भी होगा और जुदाई का वो मीठा सा दर्द भी, जो सीधे रूह को छू लेता है। तो अपनी मसरूफियात को जरा किनारे रख लीजिए, आराम से टेक लगा लें या आंखें बंद करके लेट भी सकते हैं और खुद को मुकम्मल तौर पर सौंप दीजिए सुरों और एहसासों के इस हसीन सफर के नाम। तो आइए बिना और देरी किए हुए आगाज करते हैं आज की इस खास और सहर अंगेज महफिल का। शेर सुनिए। नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल तो जीने की आरजू ही सही। फिर इसके बाद, नजर न आए तो क्या है, नजर न आए तो क्या है वो कशिश शौक, हर एक गाम पर सरगर्म गुफ्तगु ही सही। यानी अगर वो महबूब या मंजिल दिखाई नहीं भी दे रही हो तो क्या है, तो भी उस चाहत की कशिश इतनी है कि सफर के हर एक गाम यानी कदम पर दिल उसी से गुफ्तगु में मसरूफ रहता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उर्दू अदब के अजीम और बाकमाल शायर फैज अहमद फैज साहब के उस शाहकार की, जिसे जब सूफी मौसीकी की बेताज मलिका आबिदा परवीन जी अपनी बुलंद और रूहानी आवाज देती हैं तो सुनने वालों की रूह वज्द में यानी स्पिरिचुअल आनंद में आ जाती है। आबिदा परवीन जी ने इस गजल को जिस सोज और रूहानी अंदाज निगाया है वो सीधे हमारे दिलों के बंद दरवाजों को खोल देता है। तो आइए तमाम मसरूफियातों को भूलकर खो जाते हैं फैज साहब के इन खूबसूरत अल्फाजों और आबिदा परवीन जी की सूफियाना गायकी में। नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही,
نہیں وصال تو جینے کی آرزو ہی سہی. شوق پر

रजिया सुल्तान की उस तारीखी सोज के बाद अल्फाज और एहसास तक के इस बेहद हसीन मोड़ पर चलिए आपको लेकर चलती हूँ उर्दू शायरी के सुनहरी दौर में, जहाँ मोहब्बत के शिकवों में भी एक गजब की नफासत और पाकीज़गी हुआ करती थी। अजीम शायर मोमिन खान मोमिन साहब की लिखी इस शाहकार गजल को इतिहास के कई दिग्गजों ने गाया है, लेकिन जब हमारे दौर की सबसे सुरीली और मखमली गुलुकारा श्रेया घोषाल ने इस कलाम को अपनी मीठी सी आवाज़ में गाया तो इसने सीधे दिलों के तारों को छू लिया। उनके सुरों में वो मिठास है जो बीते हुए कल की हसीन यादों को हमारे सामने लाख खड़ा करती है। तो चलिए ज्यादा तकरीर न करते हुए श्रेया घोषाल की इन मखमली सुरों और मोमिन साहब के इन लाफानी अल्फाजों के नाम हमारी ये पेशकश। गजल के बोल हैं, वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आपकी नजर।

दोस्तों, श्रेया घोषाल जी की सुरीली आवाज में मोमिन साहब की उस हसीन गजल के बाद अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी मोड़ पर आज मैं आपको एक ऐसे नगमे से जोड़ने जा रही हूँ जो महज एक नगमा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा है। साल 1983 की मशहूर फिल्म सदमा के इस नगमे को जब भी सुनो तो बिखरती हुई जिंदगी को एक नया हौसला मिल जाता है। मोहतरम गुलजार साहब के लिखे इन बेमिसाल अल्फाजों को उस्ताद इलियाराजा ने साहब ने अपनी जादुई संगीत से संवारा है और जब इस कमाल की धुन को सुरेश वाडेकर साहब ने अपनी पुरकशिश और संजीदा आवाज दी तो ये नगमा हमेशा हमेशा के लिए लाफानी हो गया। गुलजार साहब इस कलाम में लिखते हैं,

है ना। और श्री देवी की याद आ गई। दोस्तों, इस अंतरे के दौरान वो गधे की सवारी करती हैं तो कितनी मासूम सी लग रही होती हैं। वक्त बेरहम है या तकदीर, कैसे जाने कोई और किससे पूछे कोई। तो आइए सुनते हैं ये पुरसोज कलाम, इस सफर की आखिरी पेशकश, सिर्फ और सिर्फ आप सबके नाम। शौक फरमाएं।

तो दोस्तों, आबिदा परवीन की जुस्तजू से शुरू हुआ ये सफ़र, कब्बन मिर्ज़ा की यादों के हिजर और श्रेया घोषाल के हसीन शिकवों से गुज़रता हुआ सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में, ऐ जिंदगी गले लगाने के बाद इस खूबसूरत से मोड़ पर आकर ठहर गया है। ये वक्त आपके साथ की वजह से कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लफ्ज़ खत्म हो सकते हैं लेकिन एहसास कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो बस यादों के झरोखों में ताज़ा रहते हैं। और जब भी हम अकेले होते हैं तो संगीत के साए में लौट आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सुरों और जज्बातों का ये गुलदस्ता आपकी रूह को छू गया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगी कुछ नए अल्फाज, कुछ अनकहे एहसास और कुछ नायाब सुरों के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपनों से बेहद मोहब्बत कीजिएगा और खुश रहिएगा। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भी। अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को अब दीजिए इजाजत। शब खैर, शुभ रात्रि।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजल

0: ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: से आरजे भावना आप पढ़ंगला भाइयों नु घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10 90.4

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: ભાવના આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM.
5: नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में. किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज. खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे किसान की समस्याएं हैं, जैसे कि पौधों में फूल का ना आना और पौधों की बढ़वार ना होना, पत्तियों का कोड़ा जाना आदि बहुत सी जो समस्याएं आती है, इससे हमारा किसान हार मान बैठता है. तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो खेती बाड़ी कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम इन समस्याओं को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको हम डिस्कस करें, इसमें हम केवीके की राय लें और उसके केवीके के माध्यम से अधिक किसानों तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे जो किसान है जो समस्याएँ आ रही है उसको हमारे साथ साझा कर सके और उन समस्याओं का हम केवीके के एक्सपर्ट के माध्यम से हम उनका समाधान कर सकें. तो इसी के साथ किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं.
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
7: खासतौर से आज के समय को अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं, कुदरत की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं. और जब कृषि क्षेत्र में हम खेती की बात करते हैं तो वहां भी प्राकृतिक खेती से बेहतर कुछ नजर विकल्प हमें नहीं आता. इसलिए जरूरी यही है कि प्राकृतिक खेती को जो हमारे और भी किसान हैं वो भी जाने. और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहरी देशों में भी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की जाती है. लेकिन जब बात हमारे देश की जाती है तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अब हमारे जो किसान हैं इस खेती से जुड़ने लगे हैं, और इस खेती के लिए भी क्या किसी तरह का जो प्रशिक्षण हमारे किसान सोचते हैं, या जब वैज्ञानिक पहलू की बात आती है क्या इस तरह की भी जटिलताएं उनके सामने आती हैं या नहीं, इस पर भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे प्राकृतिक खेती भविष्य की खेती कही जा रही है.
5: किसान भाइयों, यहाँ पर चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर. इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हम आज को किस पर बात करने वाले हैं और क्या बदलाव हम देख रहे हैं आज के समय में. तो किसान साथियों, आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर.

0: हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरह धरती भी अपनी उपज से इंसानों का पेट भरती है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। और कमाल की बात ये है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूर पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती भूमिगत जल को बढ़ाने में भी है सहायक। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, और वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये है कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 किलो मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी, इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है, और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देंगे। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढक कर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है, और खास तौर से कर्नाटक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।
1: तो जाना आपने आखिर प्राकृतिक खेती है क्या और किस तरीके से। देखिए, किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो इसके बारे में जानने की और उसके साथ साथ इस दिशा में आगे बढ़ने की। और खासतौर से अगर हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो लगातार मंत्रालय की तरफ से कोशिश यही होती है कि जो किसानों के हित में है सबसे पहले उसे प्राथमिकता दी जाए। और ऐसे ही कुछ स्थिति प्राकृतिक खेती के साथ भी हमें नजर आ रही है। इस बारे में डॉक्टर साइन आपसे हम जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती हमने जाना अपनी इस रिपोर्ट में है क्या, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर किस तरीके की ये खेती है और कैसे किसानों के लिए लाभकारी है।
2: जैसे कि जानते हैं कि भारतवर्ष में हमारे ऑलमोस्ट 140 मिलियन हेक्टर से ऊपर जो हमारे एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और जिसके आधार पर ऑलमोस्ट माने जो हमारे एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो टोटल वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 55% डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में। और ऑलमोस्ट 70% जो गांव के रहने वाले हैं उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं
1: जी।
2: तो हमारे जब ये शुरू हुआ था स्वाधीनता के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था
1: जी।
2: हमें फूड सेल्फ सफिशिएंसी बनना है, लेकिन आज हम चलते चलते फूड सेल्फ सफिशिएंट तो बन गए। हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में,
1: बिल्कुल,
2: जिसमें हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ, जो हाइब्रिड सीड्स के प्रयोग हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। लेकिन हमने रियलाइज किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब सेल्फ सफिशिएंसी बने, जो हमारा मिट्टी है, जिसका सॉइल का हेल्थ है, जो हमारे ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो उसी एग्रीकल्चर के साथ साथ इनके भी कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ, बिकॉज ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स डिपेंडेंट एग्रीकल्चर जो है
1: जी,
2: इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार के लिए बहुत जरूरत हो गया है
1: जी।
2: तो इसलिए जो वर्तमान की सरकार है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अभी हमारे डायरेक्शंस जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के, जो हम नेचर के तरफ चल रहे हैं, जिसमें एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, ये केमिकल फ्री फार्मिंग का फॉलो कर रहे हैं, और जिसमें जो आत्मनिर्भर, जो अपने फार्म में सारे एग्रो इनपुट्स प्रोडक्शन करके उसको यूज करते हुए सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो उसके डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन हो रहा है और जिसमें हमारा प्रोडक्टिविटी भी काफी माने आगे जा रहा है। इसको जब सॉइल कार्बन को हम फिक्स करते हैं और उसको नेचुरल प्रोसेस में लेते हैं और हेल्दी प्रोड्यूस लेके आते हैं तो फार्मर को भी ये बेनिफिट होता है,
1: काफी लाभ जो है देखिए किसान को मिलता है अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। और आप भी जानते होंगे जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो कौन कौन से कारक हैं, और वही कारक हैं जो कृषि में भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत की बात आती है, यूं तो ये खेती प्राचीन काल से हमारे देश में हो रही है, जो किसान हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि ये शायद एक पद्धति किसान की ही है, इजाद की हुई, और जो इसको सफल भी बना रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत की बात हम करते हैं, इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम समझना चाहेंगे, जो किसान हैं हमारे वो जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत की अगर खासतौर से बात की जाए, कैसे प्राकृतिक खेती की शुरुआत हम कर सकते हैं।
3: देखिए, मैं थोड़ा सा जो डॉक्टर अश्विन ने जो किया बताया उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप देखिए कि हमारे देश में जो हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो लगातार कम हो रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य दर्शाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन एक इंडिकेटर होता है
1: जी।
3: हमारे यहाँ पर जो हमारी मिट्टियां हैं उनका ऑर्गेनिक कार्बन अब 0.4 से 0.5% हो गया है, जबकि हमें अगर अच्छी से खेती करनी है तो ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत अभी किसानों को होने लगी है सिंचाई में, और आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो हमारी जल की उपलब्धता है जो कि 5,500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर थी, अभी वो 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर, 1500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर हो गई है। तो हम 5500 से 1500 तक आ गए हैं, जो कि समय के साथ और कम होगा। दूसरा है कि पहले हमने जब हमारे यहाँ ये ग्रीन रेवोल्यूशन या जिसका हमारे देश में लगभग 60 के दशक में, तो हमारे किसान हमारी खादें देते थे और हमारी पैदावार बहुत अच्छे से बढ़ती थी। हुआ क्या, खाद देने का दर हमारा बढ़ता रहा लेकिन पैदावार उस ढंग से नहीं बढ़ी
1: जी।
3: तो अभी हुआ क्या, एक तरफ आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, दूसरा आपका पानी की उपलब्धता कम हो रही है, तीसरा आपकी जो पैदावार है वो आपकी उतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए।
1: परिस्थितियाँ जो है विपरीत होती
3: जा रही है।
1: प्रकृति के साथ देखिए यही होता है, जब हम कहते भी हैं कि जो हमारी कुदरत है या प्रकृति है उसके साथ जब खिलवाड़ किया जाता है तो किस तरीके की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन अब आवश्यकता है उन विपरीत परिस्थितियों को सही ढंग से एक सही दिशा देने का, और उसके लिए अब सरकार प्रयास कर रही है। टी विजय कुमार जी उनके पास अब आइए चल लेते हैं। टी विजय कुमार जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब हम लगातार बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश की राज्य की अगर हम खासतौर से बात कर लें, क्या स्थिति है वहां पर प्राकृतिक खेती की और कितनी संभावनाएं उन किसानों के लिए जो अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं।
4: ये कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 2015 से हमने ये अभियान चलाया है, और अभी भी जो नीलम पटेल मैडम और श्वाइन साहब ने बताया वही परिस्थितियां हैं। किसानों की जमीन की भी प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है, तो हम किसानों के पास गए कि ये समस्या का परिष्कार जो है हम कुदरत की ओर चले, वी डू नेचुरल फार्मिंग। और यहाँ पर लगभग 15 साल से काफी गांवों में अलग अलग किसान जो हैं ये अपना प्रयास कर रहे थे, और जो सुभाष पालेकर जी हैं उनका जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल फार्मिंग के, उनके द्वारा हमने 4 बार बड़े बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दिलवाया किसानों को
1: जी।
4: और ये अभी 3,700 गांवों में ये कार्यक्रम फैल गया है, मीन्स 30% ऑफ विलेजेस, 30% गांवों में अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे राज्य में लगभग 50 लाख किसान है, और इस साल हम 7 लाख किसानों को इसमें जोड़ेंगे
1: जी। एक बड़ा आंकड़ा आपने यहाँ बताया विजय कुमार जी, किस तरीके से ज्यादा जो किसान है इससे जुड़ रहे हैं, और काफी संख्या में अलग अलग जो गांव है वहां भी ये सारी जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ भी यहाँ जो प्रगतिशील किसान मौजूद है उनका किस तरह का अनुभव रहा है प्राकृतिक खेती से जब वो जुड़े, इस बारे में भी जान लेते हैं। राजकुमार जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो जाहिर तौर पर कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, कई तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, आपका किस तरह का अनुभव रहा जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़े?
5: मुकुल जी, मैं 1993 से कृषि के क्षेत्र में आया
1: जी,
5: और 12 वर्ष मैंने वो रासायनिक खेती की, और मैं उसका भी बेस्ट किसान था
1: जी,
5: उसका भी मैं रिकॉर्ड उत्पादक किसान रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ता गया उत्पादन जरूर बढ़ा, लेकिन मिट्टी को हमने बांझ करने का काम किया, क्योंकि हमारी मिट्टी उन दिनों पानी ग्रहण करने की क्षमता छोड़ चुकी थी
1: जी।
5: जहां एक विश्वविद्यालय 10 केजी जिंक डालने की बात करता था पूरे वर्ष के लिए, मैं एक क्रॉप में ही 60 केजी डाल रहा था
1: जी। और ये अभी भी शायद हमारे कुछ किसान करते हैं
5: ऐसा, अब तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है
1: जी।
5: पहले तो मुख्य रूप से 1-2 तत्व ही बाहर से डालते थे, लेकिन अब तो अंबार लग चुका है, जैसे जैसे हम रसायनों का प्रयोग करते गए मिट्टी को कमजोर करते चले गए, और मिट्टी को कमजोर करना कभी भी किसी देश के हित में नहीं हो सकता, उस प्रणाली पर आप लंबे समय तक नहीं चल सकते।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी देश की आप बात कर लीजिए, लेकिन जहां जब मिट्टी का अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि सफलता, किसान कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन जो उम्मीद है हमें, जिस सफलता की उम्मीद करके हम चलते हैं, वो सफलता शायद हमें नहीं मिल सकती, उस तरह का उत्पादन हमें नहीं मिलता। लेकिन खासतौर से हमारे जब किसान इससे जुड़ जाते हैं, भले ही हमारे देश में जलवायु की विभिन्नता हो, और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की, वहां पर किस तरीके से जो प्राकृतिक खेती है, क्योंकि अमूमन हम यही सुनते हैं हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो पूरी तरीके से जो प्रकृति है वो आपको वहां पर नजर आएगी, लेकिन प्राकृतिक खेती की जो संभावनाएं हैं या कितने किसान जुड़े हैं ये जान लेते हैं। डॉक्टर राजेश्वर से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए।
6: देखिए, जो विषय पूरे देश भर का है, जो स्वाइन साहब से शुरू हुआ और डॉक्टर नीलम और विजय कुमार सर ने कहा, वही विषय हिमाचल प्रदेश के भी आए। एक परसेप्शन के लिए थोड़ी अलग थी कि पहाड़ का शुद्ध होगा, पहाड़ का प्रोडक्शन अच्छी है और पहाड़ की मिट्टी अच्छी है, परंतु पिछले एक दशक के डाटा को देखें तो हमारी मिट्टी डिजर्टिफिकेशन, हम जो सबसे तेजी से डिजर्टिफिकेशन की ओर राज्य बढ़ रहे हैं, हिमाचल उसमें एक है
1: जी।
6: सबसे ऊपर अभी हमारा इरिगेशन का पोटेंशियल नहीं बढ़ पाया है, और एक पोस्ट डेटा है जो बताता है कि पिछले एक दशक में 25% किसान खेती छोड़ गए हैं
1: जी।
6: तो ये विकट सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं, जो 8 करोड़ के आसपास

0: हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनके जो छोटे किसान हैं लगभग 87% ऐसे किसान है 0.6 हेक्टेयर उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग है, मैकेनाइजेशन यहाँ नहीं है। तो ये जो सुभाष पालेकर जी ने जो एक टूल किट दी हमारे लिए, ये यहाँ पर एक लोगों के लिए एक पूरा इनका जो जो रीडिजाइन हुआ, जो शिफ्ट हुआ पूरा डिजाइन पर, ये काम किया। किसान को ये लगना शुरू हुआ कि क्योंकि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है परंतु इसकी लगभग 10 करोड़ की जो इकोनॉमी है वो एप्पल और ऑक्सीजन वेजिटेबल्स की है। तो साल दर साल जो पेस्टिसाइड का स्प्रे, फर्टिलाइजर्स का, फंजीसाइड्स का बढ़ता गया, हम 18 स्प्रे पर क्रॉप तक जा रहे हैं। तो जो किसान थक चुका उसको लगा कि अब हमें एक वाइबल ऑप्शन चाहिए। 18 स्प्रे करने के बाद भी अगर प्रोडक्टिविटी लेवल हमारा या तो स्टेगनेंट हो गया है या कम हो रहा है
1: जी, तो बिल्कुल शुरू में, और शायद हर एक किसान के लिए संभव भी नहीं है कि 18 स्प्रे जो है अपनी फसल में दे पाए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो लागत है वो बढ़ जाती है एक किसान के लिए, और हर एक किसान को जानना ये जरूरी है कि लागत को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान है वो अपनी लागत को कम भी कर रहे हैं, और बल्कि उनका मानना है कि बाहर से उन्हें कुछ सामान लेने की आवश्यकता होती ही नहीं। फूल कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप भी पिछले काफी समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक बड़ा अंतर पाते हैं और लागत को अगर देखा जाए खर्च को अगर हम देखें क्या स्थिति?
2: ये प्राकृतिक खेती में जी हमने बाहर से कुछ भी खरीदना ही नहीं है किसान ने
1: जी।
2: सब अपनी गाय से, अपने मतलब बणी से, जैसे नीम आग के पेड़ कुछ किसी समस्या के लिए लेने हैं तो, नहीं तो अपने खेत में ही गाय के गोबर और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत और अपने खेत का बचा हुआ अवशेष उसी का खेत में प्रयोग करके और वहीं पे आपने उसको खाद के रूप में बदल देना है। जितना जितना हम अपने खेत में बायोमास का प्रयोग करते जाएंगे उससे हमारे नीचे केंचुओं को काम करने के लंबे समय तक काम करते हैं क्योंकि उनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है और वो बाद में साधन हमारा वहीं पे गढ़ के और वहीं पे खाद का काम करता है
1: जी।
2: और बाहर से किसान जब तक कुछ भी खरीद के ले आएगा तो उसकी उसकी आमदनी जो है उस पर सीधा असर पड़ेगा। जब बाहर से वो कुछ भी खरीद के नहीं लाएगा और एकदम से नेचुरल अच्छा पैदा करेगा उसको खाने वाले का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अपने खेत का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा
1: जी,
2: और खुद किसान का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, तो ना सिर्फ बतौर उत्पादक बल्कि अगर उपभोक्ता के नजरिए से भी हम देखें तो प्राकृतिक खेती जो है काफी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से अब हमारे जो किसान है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष जी ने एक नई दिशा जो है हमारे देश के किसानों को दी है जिसमें लगातार वो एक ही ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती जो हमें जीवन से जोड़ रही है और इसी के लिए अब हमारे जो बाकी किसान भी हैं प्रयास कर रहे हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर, छाबुआ की आवाज़।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आपने अभी एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: ये जो नेचुरल फार्मिंग है, इसके लिए भारत सरकार पूरा कोशिश कर रहे हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, किसान भाइयों को बहनों को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे जो है BPKP नाम पे एक कंपोनेंट है जिसमें नेचुरल फार्मिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं
2: जी।
1: जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है इसके नाम पे जाना जाता है, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज में उसको सपोर्ट कर रहे हैं
2: जी।
1: तो 5 कंपोनेंट उसमें है, जैसे कि ये क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ साथ भी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत जरूरत है। इसलिए क्लस्टर फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग जो किसान के साथ ये है, उसके लिए एक बड़ा कंपोनेंट है। उसके साथ साथ हमारे जो मैनपावर डेवलपमेंट, बिकॉज इस सिस्टम में मैनपावर डेवलप करके उनको फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद करेंगे
2: जी।
1: और पूरा सिस्टम को आगे ले जाने में ये है, इसलिए उसके लिए एक कंपोनेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं इसमें असिस्टेंस। और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मार्केट में
2: जी।
1: तो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी असिस्टेंस दिया जाता है। उसके साथ साथ जो किसान जो अपने खेती में जो सारे इनपुट बनाते हैं और उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक डायरेक्ट डीबीटी प्रोसीजर में उनको भी डायरेक्टली फार्मर्स को भी एक इसमें इंसेंटिव्स है। उसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये भी कंपोनेंट, बिकॉज जब मार्केटिंग करने से पहले प्रोसेसिंग करना है, देन वैल्यू एडिशंस करना है और उसके साथ साथ मार्केट लिंकेज करना है, उसके लिए भी एक कंपोनेंट है। ये जो 5 कंपोनेंट है जिसमें हम ये प्राकृतिक जो खेती है उसको आगे लेने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स हम सहायता देते हैं, सो ताकि जो हमारे किसान भाइयों हैं उसको आगे ले जाए काफी मात्रा में। ये हमारे बेसिक का जो स्कीम है BPKP का,
2: और ये उद्देश्य भी देखिए रहेगा कि किस तरीके से जो किसान है प्राकृतिक खेती को आगे ले जाते हैं। ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं अभी हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि राजेश्वर हमें बता रहे थे क्या स्थिति बनी हुई है, इस बारे में राजेश्वर जी कुछ और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि जाहिर तौर पर चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो अब किसान का जो रुझान है वो जाहिर तौर पर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ा है।
3: देखिए, आज सबसे बड़ा जो सफलता का इसका कारण है वो किसान के खेत पे मॉडल है
2: जी।
3: जो किसान के खेत पे मॉडल है उससे जो इसकी आउटस्केलिंग हो रही है वो उसमें एक जुनून किसान को बन रहा है। आप ये मान के चलिए कि एप्पल का किसान जहां 12 स्प्रे करता था, आज वो गोबर और गोमूत्र से बने हुए सारे आदान प्रयोग कर रहा है, तो ये अद्भुत इम्पैक्ट उसके एरिया में दे रहा है। तो इस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में 1,54,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया
2: जी। बिल्कुल, एक बड़ा आंकड़ा आपने यहाँ पर दिया कि किस तरीके से देखिए जो किसान है उनका रुझान सीधे तौर पर नजर आता है, लेकिन जब किसान का रुझान भी है और सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से हर कदम किसान के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में जानकारी और जो है वो कहां से हासिल कर सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या माध्यम किसान के लिए कि वो और ज्यादा जानकारी जो है प्राकृतिक खेती की ले सकें।
4: देखिए कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि किसानों की लागत को, जो खेती की लागत है उसको कम कर सकें, और अगर हम खेती की लागत को कम कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है जो उनको मुनाफा होगा खेती से वो बढ़ेगा। और ये जो प्राकृतिक खेती है ये हमारे पिछले 1.5 साल में अपने देश में 6.5 लाख हेक्टेयर ऑलरेडी इसके अंदर आ गई और किसान इसको अपना रहे हैं, और मेरे ख्याल से पिछले दशकों में ये पहला मूवमेंट है जो किसानों ने अपने आप से शुरू किया है। अब ये है कि इसके जानकारी कैसे मिले, हम नीति आयोग में 2018 से इस पे लगातार काम कर रहे हैं, और 30 नवंबर को, अभी हाल में 30 नवंबर को एक नीति आयोग ने एक बहुत बड़ी वेबसाइट प्राकृतिक प्राकृतिक खेती पर लॉन्च करी है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है
2: जी।
4: तो जो भी किसान भाई हैं इसको अपने मोबाइल पे इसको अगर इस पे जाएंगे इस वेबसाइट पर प्राकृतिक खेती पर, तो आपको प्राकृतिक खेती क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसमें जो इनपुट या आदान प्रयोग होते हैं उसकी बनाने की विधि क्या है, उसका यूट्यूब वीडियो, आपके जैसे डॉक्टर श्विन ने बताया कि जो हमारे पूरे प्रदेश में जो नोडल ऑफिसर हैं हर प्रदेश के, उनके पता, उनके टेलीफोन नंबर्स, और इसके अलावा पूरी दुनिया में कहां कहां प्राकृतिक खेती को विभिन्न नामों से, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे एफए हो, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, उन पे क्या सक्सेस है, और कुछ किसानों की सफलता की कहानियां भी कि उसमें टेलीफोन नंबर के साथ दी हुई है। तो किसान भाई उससे उस पे पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं और देख सकते हैं, और उन सबके नंबर भी हैं, तो टेलीफोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए उनको और ज्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा मटेरियल प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ पूरा, एक से लेके उसके उसकी सफलता की कहानी से लेकर कंपोनेंट से लेकर गवर्नमेंट स्कीम से लेकर जो हमारी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं, जो सपोर्ट प्रोसेस है, सब कुछ एक साथ उपलब्ध है। किसान भाई जरूर उसको देखें और उसको देख के पढ़ें और उसको समझ करके कोशिश करके इसको

0: रहा था जिसकी मैं इच्छा लेके आया था, लेकिन सुभाष पालेकर पद्धति में जब मैंने 2004 से ये आरंभ की, लगभग मुझे 15 वर्ष हो चुके हैं और मैंने अपने खेत में एक गाय से ही ये खेती आरंभ की थी
1: जी।
0: और एक गाय से तो मेरी खेती क्या पड़ोसी की भी खेती हो सकती थी
1: जी,
0: क्योंकि उस समय मैं 12 एकड़ में ये कृषि कर चुका हूँ, मेरा पूरा फार्म 12 एकड़ से है और मैं उसमें तलन भी लेता हूँ, तिलन भी लेता हूँ
1: जी,
0: अनाज की फसलें भी लेता हूँ,
1: अलग अलग फसलें
0: और सभी प्रकार की मौसमी सब्जियां लेता हूँ और उनका मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ, रासायनिक खेती से कोई किसी भी फसल में हमारा उत्पादन कम नहीं है और उत्पादन ही नहीं, जिसकी मैं चर्चा शायद कुछ हमारे से रह जाती है कभी कभी, क्योंकि हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते
1: जी।
0: हमारे उत्पाद में इतनी गुणवत्ता होती है कि हमारे उपभोक्ता उसको लेने के लिए एक उत्साह एक उनके अंदर रहती है, पहले मुझे आर्य जी से लेनी है।
1: यानी उपभोक्ता को सबसे पहले देखिए जो महत्वपूर्ण है वो गुणवत्ता, और वही गुणवत्ता जो है आप शायद सोच भी नहीं पाते होंगे कि इतना गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो है वो आपको कहीं बाजार में मिल सकता है, जो कि हमारी प्राकृतिक खेती से निकलकर आ रहा है और उसकी मांग लगातार बढ़ भी रही है। यहां एक बार फिर से आइए, रुक कर लेते हैं डॉक्टर टी विजय कुमार जी का, आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे आंध्र प्रदेश की भी अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया कि एक बड़ी संख्या में जो किसान है वो जुड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो फलीभूत होते अब नजर आ रहे हैं। आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए?
2: हमारे राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव में ये काम चलना चाहिए और हर किसान को इस प्राकृतिक खेती से जोड़ना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि अगले साल भी हर गांव में प्रेजेंस होना चाहिए। और ये लेकिन किसान को समय लगता है, अभी जो आपके किसान भाई वहां पर बैठे हैं बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमने क्या किया है, ये किसान ही ट्रेनर, किसान शिक्षक
1: जी,
2: कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बोलते हैं, अभी लगभग 6000 ऐसे मॉडल फार्मर्स हैं जो एक एक व्यक्ति 100 किसानों के साथ काम करेगा, और इस साल हमने 4000 लोगों को और जोड़ा है इसमें, तो हर साल बेस्ट फार्मर्स को ट्रेनर्स के रूप में लेकर ये बदलाव जो है ला रहे हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है महिला संगठनों का
1: जी,
2: तो महिला संगठन जो हैं, लगभग हमारे राज्य में 80 लाख महिलाएं जो हैं ये संगठनों में जुड़े हैं
1: जी,
2: तो जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके पास जाते हैं और उनको पहले मोटिवेट करते हैं, तो जब एक ग्रुप में ग्रुप लीडर बदलते हैं, वो 10 मेंबर का जो ग्रुप है वो आपस में सीखता है और सारे इनपुट्स गांव में बनाने पड़ते हैं, तो महिलाएं जो है खुद ये बायोलॉजिकल इनपुट्स है, घन जीवामृत है या बीजामृत है, ये सब खुद बना लेते हैं, तो हमारे जो शक्ति है गांव में महिलाओं की शक्ति है, इसको आगे ले जा रही है। और किसान शिक्षक
1: जी,
2: तो हमारे ख्याल में किसान ही सबसे बेहतर ट्रेनर्स हैं और साइंटिस्ट भी हैं
1: जी, बिल्कुल एक मजबूत कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर किसान को, जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ किसान के लिए बल्कि किसान के द्वारा ही ये सारी जानकारी जो है एक किसान से दूसरे किसान पर पहुंचती है। प्रगतिशील किसान है करमचंद जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करमचंद जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपने किस तरह का अंतर देखा, पहले अगर हम रासायनिक खेती की बात करें या जैविक खेती भी करते हैं किसान, अब जब हम प्राकृतिक खेती को देखते हैं कितना लाभ इसमें आपको नजर आता है?
3: 2000 में पालोपुर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद एकदम उससे पहले मैं केमिकल खेती करता था
1: जी,
3: तो अपने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के सानिध्य में ट्रेनिंग प्राप्त की थी पालमपुर यूनिवर्सिटी में जी, वो ट्रेनिंग जैसे घर आते ही हमने एकदम अडॉप्ट कर लिया था इसको, अपना प्राकृतिक खेती जी। पहले अपना इसमें रासायनिक खेती में 15 से 20 हजार रुपया हमारा खर्चा आता था दवाइयों वगैरह उसके ऊपर स्प्रे में जी, तो इसमें एट प्रेजेंट हमारा 1 से 2 हजार तक मुश्किल से खर्चा आता है सारा जी
1: जी,
3: और ये खेत है इसमें हम बैठे हैं तो 6 से 7 इंटरक्रॉप इसमें लगी हुई है जी, तो एट प्रेजेंट मतलब अपना दालें हुई, अनाज हुआ, तिल हुए, और इवन के शक्कर थी, अब गन्ने की बुआई भी कर दी, गन्ना भी अभी अपनी शक्कर भी अपने घर की हुआ करेगी जी, और उसके साथ साथ अभी बागवानी की तरफ भी हमने उसको ज्वाइन कर लिया
1: बिल्कुल, यानी हर एक फसल में हम सक्षम है प्राकृतिक रूप से उसकी खेती करने में भी। और यहाँ फूल जी फूल

0: जी आपसे मैं बेहतर ढंग से जानना चाहूंगा कि आप खेती करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई ऐसी विशेष फसल जिसकी खेती ना कर सकते हो प्राकृतिक रूप से?
1: देखिए, ये प्राकृतिक खेती है जी, इसमें हर फसल कर सकते हैं
0: जी,
1: और एक नहीं, एक खेत में एक फसल नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती में एक फसल में कम से कम 5, 10, 15, 20 तरह की
0: जी।
1: अभी ये बात थोड़ी बताने में किसानों को शायद ऐसी लगेगी कि ये संभव नहीं है, पर जब हम खेत देखते हैं, मैं अभी मेरे खेत में एक एकड़ में 25 तरह की सब्जियां लगी हुई हैं।
0: 25 तरह की सब्जियां?
1: हाँ जी,
0: जी।
1: और जो हमने सुभाष पालेकर जी की पद्धति से जो जंगल मॉडल लगाए हैं, जो पंचक्षेत्रीय बागवानी लगाई है, उसमें 5 से 7 तरह के पेड़ नीचे उसमें मसाले, हल्दी, हरी मिर्च, मतलब छांव में पैदावार देने वाली। और उनका मेथड क्या होता है कि उस खेत के किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता, फल और सब्जी और मसाला निकाल के जो भी फसल अवशेष है, केवल आपने वही फसल अवशेष वहीं पे डालना है। और गाय आधारित जो भी हमारा जीवामृत, गंजीवामृत वो आपने खेत में देना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना, सब प्रकृति पे छोड़ देना है
0: जी।
1: प्रकृति ही सब करती है, नीचे उसमें केचुए अपने आप काम करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं। हमने जो केमिकल डाल के हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को कम कर दिया था, उनको जीवामृत पूरा करेगा। और हमने केवल उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नेचुरल वातावरण देना है, प्राकृतिक वातावरण वहां पे जब हम दे देंगे तो वो अपना काम प्रकृति अपने आप शुरू कर देगी
0: जी।
1: जब ये देखते हैं हम मॉडल किसानों के खेतों पर, तो विश्वास होता है ऐसे बताने से कि एक खेत में इतनी फसल कैसे ली जा सकती है। किसान खेतों में देखेंगे ना, उससे उनको 100% विश्वास हो जाता है।
0: तो यानी एकदम से भले ही यकीन ना हो,
1: जरूर जाना चाहिए खेतों पे
0: जी। बिल्कुल, ये काफी जरूरी है। देखिए, एकदम से हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। और इस सच को आप, हम अगर कहें तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो किसान हैं वो सफल रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और आने वाले समय को अगर देखा जाए तो इसमें भी किस तरीके से एक नया मोड़ जो है, नया रूप जो है वो नजर आएगा इस नए भारत में, ये देखना जरूर काबिल तारीफ होगा। हमारे जो किसान हैं वो बखूबी इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आने वाली परिस्थितियां जो होंगी उनमें कैसे ये सफल हो पाएगी, इस बारे में भी हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा करेंगे।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: प्राकृतिक खेती में हम लोग गाय आधारित खेती करते हैं, जो गाय का गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं, और इतना बढ़िया मुनाफा और इतना कम खर्च में हमारा खेती होता है, और साथ साथ में प्रकृति के साथ में रहने का, मतलब हमारे खेत के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, अलसिया होते हैं, और उसकी वजह से खेती में कोई भी टाइप के बाहर के पदार्थ नहीं डाल के सिर्फ प्रकृति से ही साथ में लेके हम खेती करते हैं, और बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट मिलते हैं हमको।
0: बिल्कुल, बेहतर परिणाम जो है देखिए वो मिलते हैं, ये मानना यहाँ पर हितेश जी का, और यही बेहतर परिणाम है जो कि एक किसान को लगातार आगे प्रोत्साहित करते हैं, किसान आगे बढ़ते हैं। लेकिन खासतौर से अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए इस बारे में, डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे देश को अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें इसकी शुरुआत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर किसान इससे जुड़े भी हैं?
4: देखिए, ऐसा है कि कुछ के तो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगी कि देश के हर एक राज्य में अब किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, और आपने जैसे देखा कि अपनी वो लागत को कम कर रहे हैं और मुनाफा बढ़ा रहे हैं। और अगर हम अभी देखें, मुख्यतः हमारे पास 11 राज्यों का हमारे पास आंकड़ा है जो 6.5 लाख हेक्टेयर है, और इसकी शुरुआत हमारे कर्नाटक से हुई थी, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश बहुत आगे आए, जैसा कि आप विजय कुमार जी बता रहे थे, उनके किसान आगे आए, और गुजरात है, अब इसके बाद आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है। तो अगर आप देखते हैं कि हमारे चाहे दक्षिण भारत से लेके पर्वतीय राज्य तक किसानों ने इससे फायदा लिया है और इससे फायदा ले रहे हैं। और आपने देखा पूरे कार्यक्रम में किसानों ने क्या बताया कि जो उनके पास चीजें उपलब्ध हैं अपने गाँव में, घर में, उसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ना तो उनको बाजार जाना पड़ रहा है, ना अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो संसाधन हमारे संरक्षित हो रहे हैं, इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है, लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है और जो हमारा एक उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री का कि किसानों की आय को दोगुनी करना, तो हमने नीति आयोग में 114 किसानों की सफलता की कहानियों का एक संग्रह किया और वो 14 राज्यों से थी। मैं आपको बताऊं, दोगुनी नहीं, हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी भी हमसे बिल्कुल जरूर हमारे साथ वो मेरी हमें हाँ मिलाएंगे कि दोगुनी नहीं, हम 3 गुनी 4 गुनी तक अपनी इनकम हम कर पा रहे हैं प्राकृतिक खेती से। तो हमारे किसान भाई अगर इसको जुड़कर सीख ले पहले कि हमारे दूसरे भाई कैसे कर रहे हैं, तो उनको जरूर इसमें फायदा मिलेगा और अपने जो और राज्यों के हमारे किसान हैं उसी तरह उसके साथ वो जुड़ सकते हैं
0: जी।
4: और हमारे मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है, नीति आयोग तो 2018 से लगातार काम कर रहा है
0: जी।
4: और जैसा कि मैंने बताया था, हमने जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं उनकी क्या सोच है, उनके हमने लेक्चर कराए, उनको हमने नीति आयोग में आमंत्रण दिया और अपने देश के भी सारे जितने हमारे वैज्ञानिक थे या एक्सपर्ट थे उनके साथ मीटिंग कराई, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे देश के लिए जो हमारी परिस्थितियां अभी हैं उसमें प्राकृतिक खेती ही एक इस वक्त सबसे अच्छा विकल्प है, जिससे हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, चाहे नेचर हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी पृथ्वी हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, किसानों का स्वास्थ्य हो, या हम दुनिया को भी एक अच्छा एक हम वर्ल्ड लीडर बन के आ सकते हैं। और अभी हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती में अभी हमारे देश में है, तो हमारे लिए गर्व का विषय है और इन सबको हमें मिल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाना है
0: जी। बिल्कुल, इस प्रयास को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद हम यही करते हैं जो किसान हैं और भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करेंगे। लेकिन देखिए, इस वर्ष को हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं और ऐसे में यहाँ राजकुमार जी, अगर हम बीजोमृत की बात करें, जीवोमृत की बात करें, ये कितने कारगर हैं प्राकृतिक खेती में?
5: मुकुल जी, प्राकृतिक कृषि में जैसे आपने पूछा बीजोमृत का क्या उपयोग है, जब हम बीजामृत लगाते हैं तो हम फसल को इंश्योर कर देते हैं, 90% बीमारियों से बचने का एक ही हमारे पास रास्ता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं उससे हम अपने कुछ किसान इसको खाद का रूप मानते हैं
0: जी।
5: मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसको एज ए कल्चर मानता हूँ, क्योंकि जब हम कल्चर से हम उन बैक्टीरियों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं और जब हम एक जीवामृत का ड्राम छोड़ते हैं तो लगभग 30 लाख करोड़ बैक्टीरिया उसमें छोड़ते हैं और हर 20 सेकंड में अपनी अलग संख्या डबल संख्या कर लेते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें उन जीवों को, जिनको हम जब रासायनिक खेती करते थे पता नहीं था हमें कि हम उनको कितनी दुर्दशा से मारते थे
0: जी।
5: और आज हम उनका पोषण कर रहे हैं और वो हम उनका पोषण नहीं करें बल्कि वो हमारा पोषण कर रहे हैं।
0: यहाँ फूलकुमार जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे किसान हैं वो जाहिर तौर पर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या प्राकृतिक खेती में भी किसी तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं जो आपको लगता है कि निकट भविष्य में उनका कुछ समाधान होना चाहिए तो और बेहतर ढंग से और ज्यादा किसान जो है इससे जुड़ सकेंगे?
1: देखिए, किसान को इसमें समस्या तब तक आती है जब तक वो सही से सीख के नहीं करता और बताए गए सभी तरीके अपने खेत में वो मतलब इस्तेमाल नहीं करता
0: जी।
1: जब वो सही से सीख लेता है और सही से खेत में अपने पे सारे सारे तरीके अपनाता है तो उसको किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या नहीं आती। ये सब काम प्रकृति करती है अपने आप
0: जी।
1: किसान ने सिर्फ उसको सही से जो मतलब गलत काम जो किए हैं हमने, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने वाला, आग लगाने वाला, या मतलब अपना बायोमास को बाहर भट्ठों में या कहीं भी भेजने वाला, जब हम उसको सही से समझ लेंगे तो हम अपने खेत में, जैसे नीलम जी ने बताया, हमारी आमदनी 2-3 गुना नहीं, हम कई गुना, हमने सोचा नहीं होगा, किसान ने इतना कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी इनकम भी हम खेत से ले सकते हैं,
0: डिग्नी चौकनी आमदनी हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बस किसान को सही से सीख के की जरूरत है।
0: बिल्कुल, देखिए बतौर किसान इनका खुद का अनुभव रहा है कि सिर्फ हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा और यहाँ पर कोई इस तरह की आपके लिए मुश्किल नहीं है कि एक नई चीज है, कोई नई तकनीक है, बल्कि एक ऐसी पद्धति है जिस पर लगातार काम होता रहा है, अब आवश्यकता है इस पद्धति को बढ़ावा देने की, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आखिर में यहाँ स्वयं साहब, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, आपने बताया कि किस तरीके से जो बदलाव है वो प्राकृतिक खेती के तहत हम देख पाएंगे अपने कृषि क्षेत्र में, लेकिन किसानों की मदद की बात की जाए, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने तो ना सिर्फ किसान कल्याण की बात की है, साथ में कृषि का विकास तो होगा ही, किसान का कल्याण भी होगा, प्राकृतिक खेती से ये कितना सार्थक आपको नजर आता है?
6: डेफिनेटली ये जो प्राकृतिक खेती है, जैसे कि हमारे सारे किसान भाइयों ने बताए हैं, एक तो है कि कॉस्ट कम हो रहा है, उनको इनकम में वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्टिविटी वृद्धि हो रहा है, उसके साथ साथ एक सर्टनली जो इकोसिस्टम है हमारे वो भी एकदम सस्टेनेबल वे में आ रहा है। और इसमें जो एग्रीकल्चर जो आज आप देख रहे होंगे
0: जी
6: कि पूरा दुनिया भर में एक चर्चा हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है उसको कम करना जरूरत है। इसमें सारे बहुत सारे कंट्रीज इसमें कमिट भी किए हैं, भारत भी इसमें कमिट किए हैं जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और ये COP26 में भी ये चर्चा हुआ है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि प्राकृतिक खेती के बारे में एम्फोसिस दिया है वेरी क्लियरली। तो आगे का रास्ता काफी इसका बहुत भविष्य उज्जवल है। इसमें भारत सरकार भी एकदम स्ट्रैटेजी बनाए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी बनाए कि इसको कैसे आगे लेके जाए। जैसे कि है हम लोगों का जो बेसिक फोकस एम्फोसिस है पॉलिसी है, इसमें हम जैसे एरिया में हम चल रहे हैं जैसे ड्राईलैंड एरिया है, रेनफेड एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, जहां पे हम उसको अच्छा से अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि उसको करने का
0: जी।
6: उसके साथ साथ एक और हमने एम्फोसिस किया है कि जैसे एक पीओ स्ट्रैटेजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रैटेजी जो टुगेदर, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए अपने खेती में सारी चीजें प्रोड्यूस करना, इनपुट तैयार करना है, तो इसलिए एक विलेज लेवल स्ट्रैटेजी भी तैयार हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्ट्रैटेजी भी तैयार हुआ
0: जी।
6: जिसमें ये जो एसएचजी वगैरह के बाद हमने एक चैंपियन फार्मर का भी जिक्र किया है, जैसे कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में चैंपियन फार्मर भी होगा, और जैसे कि विलेज लेवल अगर देखेंगे वहां पे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होगा
0: जी।
6: तो इसलिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है वो फिर जो पंचायत लेवल में वो लोकल रिसोर्स पर्सन होंगे
0: जी।
6: तो ये तीन लेवल ऑफ जो है, चैंपियन फार्मर, लोकल रिसोर्स पर्सन पंचायत लेवल में, और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये जो मैन पावर का ये है, इसमें हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे हमारा फुलकुमार साहब बोले हैं कि जब उसको पता लग जाएगा इसको बहुत आगे लेके जाएगा, बिकॉज इनकम वृद्धि काफी ये है
0: जी।
6: तो उसको एक स्ट्रैटेजी बना के हमने चला है ताकि ये जो है हमारा सारी चीजें वो आराम से हो जाए। और उसके साथ साथ हमने एक स्ट्रैटेजी भी बना रहे कन्वर्जेंस
0: जी,
6: कि बहुत सारी चीजें जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके साथ इसके कन्वर्जेंस है, एफपीओ स्कीम है उसके साथ कन्वर्जेंस है,
0: सामंजस्य इसमें नजर आ सकता
6: नजर आता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें भी हम उसको डॉक्टेल कर रहे हैं ताकि ये चीजें हमारे कन्वर्जेंस में आ जाए। तो भारत सरकार तरफ से भी काफी कन्वर्जेंस इसमें दिया गया है
0: जी,
6: स्टेट के तरफ से भी इसमें इफेक्ट है
0: जी।
6: तो हमें तो पूरा इसका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है, जबकि ये जो हमारे आप जैसे कि जानते हैं कि जो मिट्टी का जो सॉइल का जो कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, जो नेचर का है, आज हम देख रहे हैं कि जहां पे प्राकृतिक खेती होता है वहां पे बर्ड्स जहां पे केमिकल खेती में नहीं नजर आते थे, आज प्राकृतिक खेती में भी हम देख रहे हैं कि बर्ड्स वापस आ रहे हैं वहां पे, जो नेचुरल इकोसिस्टम एक रिवोल्ट हो रहा है।
0: ये वही बदलाव है जिसकी आज के समय में आवश्यकता थी, और वही बदलाव देखिए हमारे किसानों की मेहनत के बलबूते, हम कह सकते हैं प्राकृतिक खेती के बलबूते वो नजर आ रहा है। आज के समय में अगर हम बात करते हैं, जलवायु की बात की जाए, जल की बात करें, जमीन की बात करें, ये तीनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं हमारे किसान के जीवन से, और उसी जीवन से जुड़ती है हमारी प्राकृतिक खेती, जिसके लिए आवश्यक है कि हमारे किसान इसको जाने समझें और फिर इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं, जिससे आत्मनिर्भरता भी इस देश में आ सके और इस देश का किसान और भी मजबूत हो सके। तो आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में जो हमारे विशेषज्ञ रहे, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी इस बारे में दी कैसे प्राकृतिक खेती इस देश को आगे बढ़ा रही है और इस देश की कृषि को एक नया रूप दे रही है। नए भारत की नई कृषि जो है प्राकृतिक खेती के रूप में हमें आने वाले समय में नजर आ सकती है। फिलहाल आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इतनी सारी जानकारियां उनको दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार,
4: नमस्कार,
0: धन्यवाद। तो जाना आपने भी प्राकृतिक खेती आखिर क्यों एक मूल मंत्र अब नजर आ रहा है, एक कारगर विकल्प के तौर पर हमें नजर आ रही है इस देश की कृषि को बेहतर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था।

संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा।

और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। जीवन से जोड़ती प्राकृतिक खेती। जी हाँ किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, कैसे हमारी जो प्राकृतिक कृषि है वो कैसे हमें जीवन से जोड़ती है। जो प्राकृतिक खेती है ना केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारे पशुओं के, हमारी जमीन के और हमारे जल स्रोतों को भी शुद्ध करती है। किसान साथियों, हम जितना प्राकृतिक खेती करेंगे उतना ही हम हमारी मृदा को, हमारे वातावरण को और हमारे जल स्रोतों को हम बचाए रखेंगे। किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि आप में से काफी किसान जो हैं, जो अभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो किसान अभी जो रासायनिक खेती में ज़्यादा रासायनिक खेती ज़्यादा कर रहे हैं, वो किसान भी धीरे धीरे अपना रुख प्राकृतिक खेती की ओर करेंगे। साथ ही किसान साथियों, हमारा जो झवा का केविकी है इसके माध्यम से भी आप बहुत सी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत से जो खाद है जो हमारे पशुओं से हम बना सकते हैं, पशु मूत्र, पशु मल से जो खाद बनाए जा सकते हैं उनकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह पूर्णतः मुफ्त ट्रेनिंग है, इसके लिए आपको सिर्फ केविकी में आकर यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया है और अपने खेतों में इसका प्रयोग भी करेंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम के साथ, झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमारता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है, यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
7: नमस्कार,
6: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
8: नमस्कार,
6: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
9: नमस्कार।
6: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
7: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है, ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
5: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
8: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
6: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
9: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया एक बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
6: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है या इस पर।
10: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
11: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
8: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है
11: जी,
8: और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उसको प्रभावित करता है।
11: बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है।
9: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है
11: जी।
9: तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि भी किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात ये कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सब का हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
10: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है तो उससे हमारे में कैंसर और गॉइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करें, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका इस जेल का प्रयोग किया जाता है।
8: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है।
11: अच्छा।
8: ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
11: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया, हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
10: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है, तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
11: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है, बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
8: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पे ये बताया जाता है कि 4-2-1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास धारी जो उर्वरक है इनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बाद हो जाती है, जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारी मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है, इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं खर्च, उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4-2-1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
11: डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
9: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4-2-1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें, तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
5: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा, और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना ये भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में
2: जी।
3: या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए, आगे भी कर रही है, और किसानों
2: को यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है, और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की, और जिसकी वजह से बहुत से हमारी जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
1: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है, और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारे सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
2: कदम उठाया गया है। किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताएं।

0: एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है। और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत हैं, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए। लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की। इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है, वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
0: जी, बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
1: जी।
0: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जल में विलेय फर्टिलाइजर है, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पे पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
1: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें बताएं।
2: जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधे को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
3: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके, राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा, वो ये होगा जो कि ना, जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट, जो कि कह रहे हैं ना सूखा, जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे, उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है, ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे, जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव, हम जब इनका

0: माल करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों आपकी क्षमता में अधिक सुधार होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
2: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपकी अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारी मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहें, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं?
3: देखिए, जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवाएं जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रख के हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम ना केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
1: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है। और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका, और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है, और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है, और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में, जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
4: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटा भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइटा भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है, आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं, जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं, अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में
3: आप सुन रहे हैं। झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें, हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
1: जी,
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है। जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
1: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो उद्घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस प्रकार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
5: जी बिल्कुल, केवल इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना
2: जी।
5: और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पर किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके, और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें जरूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। आइए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज के कलाकार के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो टैलेंट हैं वो हैं अनीता मैम। बाकी अनीता मैम खुद बताएंगी तो जरा ज्यादा मजा आएगा। अनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: नमस्ते समीर जी, मेरा नाम अनीता पई है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। एक बैंक मैनेजर रह चुकी हूँ, रिसेंटली मैंने रिजाइन किया है
0: जी। ओके, तो दोस्तों आपने सुना, अनीता जी बैंक मैनेजर रह चुके हैं और शायद जो भी है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को और ज्यादा एंजॉय करने के लिए शायद उन्होंने अभी रिजाइन किया है और अब वो मेरे ख्याल से अपने सिंगिंग के पैशन को परस्यू कर रही हैं। ठीक है ना अनीता जी?
1: सही है सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को अनीता जी के ही गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत सुंदर शुरुआत अनीता जी। चलिए बचपन में चलते हैं आपके। आप बचपन में जब थे तो बचपन में बड़ी सारी हरकतें हम लोग करते हैं, शैतानियां करते हैं, कभी चोट भी लगती है, कभी खुशी भी होती है। तो अपने बचपन की कोई पसंदीदा प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: समीर जी, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो उस हिसाब से बचपन में जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब हमारे घर पे सब मेरी चाचा और मम्मी डैडी सब के मतलब रिलेटिव्स जो है वो रहने आते थे, और हम भी कभी कभी उनके घर पे रहने जाते थे गांव में
0: जी।
1: तो जो सब बच्चे मिलकर खेलते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, वो जो बचपन के दिन है वो सबसे यादगार दिन थे।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सबसे यादगार दिन थे। तो उसी हाँ। उन्हीं यादों में से कोई एक प्यारी सी याद बताइए ना, कोई शैतानी की होगी आपने, कुछ किया होगा।
1: एकदम जब छोटे थे तो मेरे एक चाचा का लड़का है
0: जी।
1: उसका मैंने वो बहुत छोटा था, मैं उससे थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने जो इंक है
0: जी जी जी
1: वो इंक से उसके फेस पे सब पेंट की तरह पेंट किया था। घर पे डांट बाद में मिली
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी जी
1: तभी बचपन था, कुछ समझ में नहीं आता था।
0: जी मैं समझ सकता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह की चीजों के बारे में ही तो पूछ रहा था मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अपने बचपन के छोटे छोटे यादों को याद कीजिए, और चलिए सुनिए अनीता जी का ही गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: सुंदर गायकी, बहुत प्यारी गायकी। अनीता जी, अब हम बड़े हो गए हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं, कभी हम नाकामयाब होते हैं, नाकामयाबियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई नाकामयाबी, कोई असफलता रही जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो?
1: ऐसे कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए असफलता जरूरी है
0: जी,
1: और हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार ऐसे छोटी छोटी बातों में हुआ है। जब भी मैं स्पेशली बोलूंगी, ऑफिस रिलेटेड बोल रही हूँ, तो उसमें कभी अगर हम काम करके भी प्रमोशंस नहीं मिलने में थोड़ी देरी होती है, मतलब वो चलते रहता है, उसका कुछ इश्यू नहीं है वैसा। लेकिन वो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब कुछ काम दिया गया है और वो टाइम पे, टाइम बाउंड रहता है सब काम, तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो थोड़ा सा, थोड़ी सी निराशा होती है
0: जी।
1: लेकिन किसी बाद में मन को अपने ये करके किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस न देके अपने में पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ते जाना है, यही सबसे बड़ी सीख है और सबक है।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने साहब, बड़ी ही सुंदर बात कही कि असफलता से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स आते रहते हैं और उन्हीं से सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, एक और गीत इसी रंग में डूबा हुआ सुनते हैं, अनीता जी का गाया हुआ।

0: अनिता जी, जब हम असफलताओं को पार कर लेते हैं और सफल होते हैं तो हमें एप्रिसिएशन मिलता है, हमारी प्रशंसा की जाती है। और देखिए, आप माने या ना माने, इस दुनिया में प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो आपको आज तक की मिली सबसे अच्छी प्रशंसा कौन सी है?
1: सबसे अच्छी प्रशंसा तो मुझे याद नहीं है समीर जी। हाँ, लेकिन प्रशंसा तो मिलती रहती है। मतलब मैं तो बैंक में काम कर चुकी हूँ, तो मेरे बैंक के सुपीरियर से मेरे काम की प्रति जो निष्ठा थी, अभी जो जो भी मैं काम करती थी उसके लिए, और जो बैंक के कस्टमर्स थे उनका मेरी सर्विस जो देती थी उसके लिए, सब प्रशंसा मिलती रही है हमेशा। और म्यूजिक की अगर कहे तो मैं म्यूजिकल ग्रुप्स में गाती हूँ, तो उसमें भी मेरे गाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा मिली है मुझे।
0: बड़ी ही सुंदर बात, बिल्कुल ठीक ठीक कहा मनीता मैम आपने। ये बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशन प्रशंसा के रूप
1: मोटिवेशन मिलता है,
0: मोटिवेशन प्रशंसा के रूप में ही हमारे पास आता है। हाँ। और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और गीत का मजा लेते हैं अनिता जी की ही आवाज में।

0: अनिता जी, मुझे अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली तीन व्यक्तियों के बारे में बताइए, तीन लोगों के बारे में, थ्री, जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो, आपके जीवन पर प्रभाव डाला हो, तीन ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के।
1: मैं ऐसे स्पेसिफिकली मैंने जैसे कहा आपसे कि मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो तीन प्रभावशाली को मैं तीन ग्रुप में ये करूंगी। सबसे पहले मेरी जॉइंट फैमिली, जिन्होंने मुझे नैतिक मूल्य सिखाए, ईमानदारी से अपना काम कैसे करना है, सबका सम्मान करना और सबके लिए करुणा और सहानुभूति रखना, ये सब जो मूल्य है मुझे मेरे फैमिली से मिले हैं, जो भी है जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे, और मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और दूसरी प्रभावशाली व्यक्ति मेरे जो बचपन से जो मेरे फ्रेंड्स है और जो कलीग्स जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मिलके जिम्मेदारी से कैसे काम करते हैं, एक टीम बन के कैसे काम करते हैं, ये मुझे सीख मिली है, चाहे अपने से सुपीरियर से हो या अपने से छोटों से हो, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। और तीसरे प्रभावशाली अगर आप पूछेंगे तो वो है मेरे ससुराल वाले, स्पेशली मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरा हर काम मेरे साथ दिया है, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट करके एक सपोर्टिव जीवन साथी होने का फर्ज निभाया है, हर एक इसमें, हर एक फील्ड में, कोई भी हो, चाहे मेरा घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे म्यूजिक के रिलेटेड हो, कुछ भी।
0: बहुत खूब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है आपका। तो चलिए, बहुत खूबसूरत अगला गीत हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, आप ही की आवाज में।

0: बहुत सुंदर अनीता जी, जिस भी उम्र में आप है, उम्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अपने आप को फिट और सक्रिय रखना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं डूब जाना चाहिए और शारीरिक तौर पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए क्या करती हैं?
1: समीर जी, मेरे लिए फिट रखने का तरीका है प्राणायाम, योगा, और अभी जबकि मैं अभी बैंक में नहीं हूँ तो उसमें 40 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक भी रहता है मेरा, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक जो मन को शांति देता है वो तो है ही।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत सारे लोगों की ही तरह से आपका भी तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। योगा हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, बढ़ती हुई उम्र में हमारे जोड़ों को, हमारे शरीर को ताकत देता है, प्राणायाम हमको शांत बनाता है, एक्टिव बनाता है, और ब्रिस्क वॉक ऑफ कोर्स कार्डियक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बिल्कुल सही है दोस्तों, मुझे भी सारा दिन स्टूडियो में कुर्सी पर बैठे बैठे गड़बड़ हो जाती है, मुझे भी थोड़ा सा योगा करना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो चलिए दोस्तों, एक बिल्कुल फिट और एक्टिव गीत भी सुनते हैं अनीता जी का ही।

0: बहुत खूब। अनिता जी, हमारी दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हमारे चारों तरफ हो रहा है, हम उसका एक पार्ट हैं। ना भी हो तभी भी हम बहुत तेजी से बहती हुई इस डेवलपमेंट की धारा में बह गए हैं, हमें भी लपेट लिया गया है, हम चाहें या ना चाहें। उसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है इंटरनेट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फर्ज कीजिए इंटरनेट 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, तो आपकी जिंदगी पर क्या असर आएगा?
1: आज की दुनिया में इंटरनेट एक नेसेसिटी हो गई है समीर जी, सबके लिए, चाहे वो आम लोग के लिए हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। इंटरनेट के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और अभी जब कैश कंपोनेंट कम हो गया है, मतलब अभी जो है सब यूपीआई ट्रांजेक्शन्स ये सब जब ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से इंटरनेट का तो जो जितने नुकसान है उतने फायदे भी है और नुकसान भी है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इंटरनेट बंद होने से फिर से फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे के लिए वक्त निकाल सकेंगे
0: जी,
1: अगर इंटरनेट बंद किया जाए तो। और पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव होगा आदमी का। लेकिन अगर कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज पे फर्क पड़ेगा।
0: मैम, कमर्शियल एक्टिविटीज की ही अगर आप बात करते हैं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज रात को 8 बजे से पहले भी तो की जा सकती हैं।
1: हाँ, की जा सकती है, लेकिन इसलिए बोला इमरजेंसी में कभी कभी अपने को कुछ ट्रांसफर करना पड़ता है, फंड्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो उसमें क्या है अभी जो इतनी सहूलियत हो गई है तो उस हिसाब से, नहीं तो इट इज परफेक्टली ओके कि 8 to 8 नहीं रहेगा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी जो आदत हो गई है, अपने आप को मेन क्या है, आदमी ने खुद को ही कंट्रोल करना चाहिए कि जो जरूरी नहीं है वो चीजें यूज करनी नहीं चाहिए। एक बार घर आने के बाद अपने फैमिली को ही वक्त देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
0: आपका मानना बिल्कुल ठीक है अनिता मैम। मैं उसी वजह से तो कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, पहली बात तो ये, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा विचारक बाबा हूं जो दुनिया को समझाने चलूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हम लोगों की अगर आदतें बिगड़ जाए ना तो हम लोगों को डंडा ही चाहिए होता है अपनी आदतें ठीक करने के लिए।
1: हाँ, सच
0: पिटाई, हमें पिटाई चाहिए होती है। तो अगर हम अभी किसी को भी कहने लगे कि आप 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट यूज ना करो ना, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बंद कर देंगे ना तो मजबूरन उनको मानना पड़ेगा।
1: बराबर कहा।
0: तो मैं इसलिए कह रहा हूं मैम कि 8 बजे से 8 बजे तक अगर बंद, मैं आपका विचार जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो
1: तो
0: जाए,
1: मेरे लिए तो परफेक्टली ओके है सर
0: जी,
1: बहुत से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे
0: दोस्तों
1: इसमें
0: जी। दोस्तों सुनिए, अनिता जी ने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, और आज की डेट में इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल भी कर रही हैं वो, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को भी रियलाइज कर रही हैं कि अगर ऐसा हुआ 8 बजे से 8 बजे तक बंद हुआ तो जिंदगी के कई पहलुओं में हमें बड़ा फायदा पहुंचेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं आप ही की आवाज में।

0: बहुत सुंदर। फर्ज कीजिए अनिता जी, आपको किसी भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से, हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास में जाइए, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐतिहासिक व्यक्ति से बात करने का मौका मिले, बिल्कुल एक्सक्लूसिव, वो अकेले आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनसे आपको एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए, एक सवाल पूछिए उनसे। तो पहली बात तो किससे बात करना चाहेंगे और सवाल क्या पूछेंगे आप?
1: मैं आदरणीय श्रीमान रतन टाटा जी, जो एक आदर्श भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति रह चुके हैं, उनसे पूछना चाहती कि कौन से अनुभव ने आपको परोपकार के लिए प्रेरित किया?
0: बहुत खूब, अमेजिंग अमेजिंग। अनिता जी, मैं आपकी थॉट प्रोसेस को सीरियसली अप्रिशिएट करता हूं। भारत रत्न रतन टाटा जी से आप बात करना चाहेंगे। रतन टाटा जी से मैं ही नहीं, करीब करीब पूरा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। इतने सरल इंसान, इतने ज्यादा अमीर होते हुए भी इतने सरल, बड़ा मिलना मुश्किल है साहब। मैंने कई जगह पर इस चीज को सुना, मैं कॉरपोरेट में भी रहा, कि टाटा कंपनी को जो भी ज्वाइन करता है वो कभी टाटा कंपनी छोड़ता नहीं है। पैसे कम मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति टाटा कंपनी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही इस तरीके की है कि वो इंसान से, इंसान को इंसान समझते हैं,
1: इंसान को इंसान समझते हैं, बराबर कहा आपने,
0: वो इंसान को नंबर्स नहीं समझते, वो इंसान को इंसान समझते हैं।
1: सच कहा आपने सर।
0: तो इस वजह से मुझे भी रतन टाटा बहुत ज्यादा पसंद है, और आपने बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को, ऐतिहासिक व्यक्ति को चुना, शुभकामनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं अनिता जी की ही आवाज में।

0: अनिता जी, हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हैं। आप बैंक जाया करती थी, बैंक में तमाम काम किया करते थे। हम सुबह 9 बजे पहुंच गए, 10 बजे पहुंच गए, जो भी एक ऑफिस टाइम होता है। या कोई महिला अगर घर पे काम कर रही है तो उसका वक्त जो दिन होता है बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है, या जो भी है। हर व्यक्ति दिन के कोई ना कोई वक्त में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, प्रफुल्लित होता है, मोटिवेटेड होता है, एक्साइटेड होता है, पावरफुल होता है। वो वक्त आपका कौन सा होता है पूरे दिन में?
1: अगर पूरे दिन में कहो तो सुबह का जो टाइम है
0: जी,
1: वो ही सर्वश्रेष्ठ काम होता है तभी, क्योंकि तभी जो फिट रखने के लिए अपने आप को हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी करते हैं
0: जी,
1: और सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, फिर फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, और ऑफिस में जब रहते हैं तो ऑफिस का भी सबसे फ्रूटफुल काम जो है वो सुबह के समय ही होता है, जब हम एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए सुबह का स्पेशली, सुबह मेरी दिन की शुरुआत तो 5:30 बजे होती है सुबह से।
0: बहुत बढ़िया।
1: 5:30 से लेके समझो जब मैं बैंक में थी, अभी रिसेंटली छोड़ा है, तो 2 बजे तक जो मेन रहता है, तो उसमें सब जो डिफिकल्ट काम है वो करके लेते हैं, तो सब काम अच्छे से होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो मेरे लिए सुबह का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ काम।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना कि अनीता जी के लिए सुबह का वक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। सबके लिए अपना अपना वक्त होता है, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे ऊपर वाले ने हमारे अकाउंट में डाले हैं, हम कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनीता जी के लिए सुबह का वक्त बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा गीत सुनते हैं अनीता जी की आवाज में।

0: बहुत सुंदर। अनिता जी, आपके सारे दोस्तों को, हमारे सारे दोस्तों को, इस प्लेटफॉर्म के सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी समीर जी,
0: थैंक यू,
1: कि इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से मेरी आवाज जो है लोगों तक पहुंच पाई। और सबसे सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने शौक को जिंदा रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।
0: बड़ा ही प्यारा संदेश दोस्तों, क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत खूब। अनिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
2: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पवित्र, पायस, ब्यूटीफुल एपिसोड लेकर मैं आपका रेडियो दोस्त समीर हाजिर हैं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, आप उनकी बातचीत सुनेंगे दोस्तों, उनके गीतों का लुत्फ उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मैं वेलकम करूँगा मनस्वी का। बाकी मनस्वी अपने बारे में खुद बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना सा ज़रूर बताना चाहूँगा मैं दोस्तों कि मनस्वी एक बिल्कुल यंग लेडी है, शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एंड वी सिंसियरली वेलकम मनस्वी इन अवर आज के कलाकार फैमिली एज द यंगेस्ट सिंगर, यंगेस्ट टैलेंट, यंगेस्ट प्रतिभा। तो मनस्वी आपका स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। और सभी लोगों से बात कीजिए ना, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
1: जी सर, नमस्ते, मेरा नाम मनस्वी है और मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग और सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, स्पेशली 90s के गाने हिंदी में। और I am right now studying in 9th grade और मुझे श्रेया घोषाल जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: ओके,

0: Oh God, oh so cute, so cute. I understand, Manasvi. You be very, very comfortable with our family. हम लोग सब आज के कलाकार एक फैमिली हैं. तो दोस्तों आपने जाना कि मनस्वी को श्रिया घोषाल के गीत बहुत पसंद है. एंड सरप्राइजिंगली बड़ी प्यारी सी बात कही उन्होंने कि उनको 90s के सॉन्ग्स पसंद है. तो मनस्वी आपने बताया आप 9th में हैं और आपको 90s के सॉन्ग्स पसंद हैं. तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग है, कोई गाना है 90s का, जैसे आपने कहा ना, जो आपको बहुत बहुत पसंद हो, हमको उसके बारे में बताइए ना.
1: सर मुझे लगता है कि वो फेवरेट गाना बदलता रहता है, क्योंकि कभी कभी मैं एक नया गाना सुनती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और फिर
0: वो चेंज हो जाता है.
1: लेकिन
0: सो क्यूट. ओके, फिर भी चलो ना यार, बताओ ना, 2-3 गाने जो चेंज हो गए होंगे. अच्छा चलो, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है फेवरेट, वो तो बता दो.
1: अभी
0: टेक योर टाइम, आराम से सोचो, बताओ ना.
1: जी सर, अभी थोड़ा और मॉडर्न गाना है ये,
0: चलेगा.
1: सुन साथिया, गाना में सुन साथिया,
0: थोड़ा सा गुनगुना के बताओ ना यार.
1: जी सर. सुन साथिया माहिया, बरसा दे इश्का की स्याहिया.
0: वाओ. सो ऐसा होता होगा ना मनसी कि आप अपने आप से, जैसे ये वाला गाना अभी आपको आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो दिन भर इधर उधर कहीं आते जाते गुनगुनाते रहते होंगे इसको, है ना.
1: जी सर बिल्कुल.
0: या फिर शायद आपके फोन में आपने इसको डाल के रखा होगा, तो आप लगातार इसको सुनते रहते होंगे, करेक्ट.
1: जी सर.
0: कौन सी फिल्म का गाना है बेटा
1: ये? ABCD 2 की.
0: अच्छा,
1: एनीबॉडी कैन डांस 2 मूवी का है.
0: ओके ओके ओके. तो यार एनीबॉडी कैन डांस तो वही 90s की मूवीज है ना?
1: नहीं, 2000 के बाद ही.
0: 2000 के बाद की है क्या? चलो वाओ. तो दोस्तों आपने सुन भी लिया, मनस्वी ने गुनगुना के बताया भी कि कौन सा गीत अभी उनका फेवरेट चल रहा है. और जाहिर सी बात है गीत संगीत तो सभी अच्छे होते हैं और टाइम टू टाइम हमारे पसंद भी चेंज होती रहती है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनस्वी के कुछ सॉन्ग्स फिक्स हो जाएंगे जो उनको हमेशा पसंद रहेंगे. चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और ये गीत सुनते हैं मनस्वी जी की ही आवाज में, जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए रिकॉर्ड किए. आई विल कम बैक.

0: ब्यूटिफुल सिंगिंग एंड ब्यूटिफुल स्टार्ट। तो चलिए मनस्वी आगे चलते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में और जानते हैं कि आपने सिंगिंग कब से शुरू की, पहले तो मुझको ये बताओ। और दूसरा, यूं तो आपने बता ही दिया कि श्रेया घोषाल आपके फेवरेट सिंगर हैं, करेक्ट? तो साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि 90s के गाने आपको पसंद है। तो चलिए बात यहां पर सिर्फ ये रह जाती है कि आपने सिंगिंग कब से शुरू की और किसने आपको मोटिवेट किया।
1: सर मैं बहुत सालों से मतलब क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हूँ, कर्नाटिक वोकल्स, कर्नाटिक म्यूजिक, उसे मैंने 4 साल सीखा है। और अभी मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ। और
0: Take it easy, take your time, आराम से सोच के बोलो, कोई बात नहीं।
1: मैंने अपना जूनियर्स एग्जामिनेशन दिया है कर्नाटक में। और अभी मैं शंकर महादेवन एकेडमी में हिंदुस्तानी सीख रही हूँ सर।
0: ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। दोस्तों देखिए ना, इतना प्यार से वो अपने म्यूजिक को प्यार करती हैं, लव करती हैं, पैशनेट हैं कि वो अभी शंकर महादेवन एकेडमी से हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रही हैं। बाकी कर्नाटका म्यूजिक वो सीख चुकी हैं। ऑफ कोर्स अब सभी सोच के देखिए ना, अभी से मनस्वी इतना पैशनेट है अपने म्यूजिक को लेकर, लगातार लर्निंग, तो कहाँ तक वो जाएंगी। We wish all the very best and of course, अब तो हम मनस्वी से जुड़ गए हैं, पूरी फैमिली हमारी, all 350 singers are there with मनस्वी, और हम उसको देखेंगे कि वो कितना दूर तक जाती हैं। Amazing मनस्वी, amazing, congratulations.
1: Thank you sir.
0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मनस्वी के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद ले। और जब आपको ये पता चल चुका है कि मनस्वी कितना मेहनत कर रही हैं, तो आपको इन गीतों को सुनने में और भी मजा आएगा। सुनिए ना।

0: ब्यूटिफुल। मनस्वी, चलिए अपने बारे में थोड़ा सा और बताते हुए मुझे ये बताइए, म्यूजिक के अलावा, एक्सेप्ट म्यूजिक, म्यूजिक को छोड़ दीजिए, म्यूजिक तो आपका फर्स्ट लव है, फर्स्ट पैशन है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। लेकिन म्यूजिक के अलावा आप किस चीज को लेकर पैशनेट हैं? मेरा कहने का मतलब है, मे बी सम स्पोर्ट्स, मे बी ड्रामा एक्टिंग, मे बी बुक्स, मे बी राइटिंग, मे बी पोइट्री, मे बी पेंटिंग, आई डोंट नो, आप किस चीज को लेकर पैशनेट हो?
1: सर, मैं बैडमिंटन काफी खेलती हूँ।
0: ओह, सो क्यूट, ओके।
1: और मतलब जब भी हो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूब।
1: और एक और पैशन

0: नहीं खेला, लेकिन सारे के सारे स्पोर्ट्स में, आपकी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को सिर्फ बैडमिंटन ही अच्छा लगता है। आई मीन बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, नाम ले तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मे बी टेबल टेनिस, मे बी टेनिस, मैं क्रिकेट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे क्रिकेट अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन इन सब चीजों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद बैडमिंटन रहा। तो अभी आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या आप अपने स्कूल वगैरह में भी खेलते हैं?
1: जी सर, मतलब कोई कंपटीशन हो तो बिल्कुल खेलती हूँ, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी खेलती हूँ।
0: That's very nice. तो आपके जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके पास आसपास कोर्ट्स होंगे कोई, या तो सीमेंटेड कोर्ट होगा या वुडन कोर्ट होगा, कैसा कोर्ट है?
1: दोनों है सर,
0: वुडन कोर्ट भी है। That's very nice. क्योंकि एक्चुअली बैडमिंटन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ना वुडन कोर्ट पर ही आता है।
1: जी सर।
0: आपको मालूम है क्यों? क्योंकि लकड़ी के ऊपर खेलने से ना, लकड़ी से आपको पुश मिलता है जंप लेने के लिए या फौरन रिस्पॉन्ड करने के लिए, ज्यादा अच्छा पुश मिलता है और आपके नीज वगैरह को भी चोट नहीं लगती, इसलिए।
1: जी सर, मुझे पता नहीं था।
0: ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों, चलिए, येट अनदर बैडमिंटन स्टार इज इन मेकिंग हमारी आज के कलाकार फैमिली में। I am so happy about that. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अभी तो मनस्वी के गीतों का मजा लें जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए, आइए सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मनस्वी, दैट वॉज सीरियसली सीरियसली अमेजिंग. ओके, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या शायद रिलेटिव्स, कोई कजिन, कोई यू नो अंकल आंटी चाचा जिनको बोलते हैं या ताऊ जी जिनको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं है, तो या फिर फ्रेंड्स होंगे जो आपकी सिंगिंग को मोटिवेट करते होंगे कि नहीं यार मनस्वी गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, इसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि ऑलरेडी आप कर्नाटक म्यूजिक सीख चुके हो, अब हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रहे हो. सो माई क्वेश्चन इज, कौन कौन लोग हैं वो जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं, मे बी योर मॉम डैड, कोई भी, उनका नाम लीजिए, क्योंकि अगले सॉन्ग्स हम उनको ही डेडिकेट करेंगे.
1: जी सर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरी मम्मी करती है.
0: आहा, ओके.
1: और पापा भी बहुत मोटिवेट करते हैं. और उनके अलावा स्कूल में मेरे दोस्त बहुत बार कहते रहते हैं कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, गाते रहो तुम, कोई गाना गाओ वैसे.
0: ऑलराइट, ओके. तो ये लोग हैं जो लगातार, एक दो फ्रेंड्स के नाम लो ना यार, उनको भी अच्छा लगेगा, अगर वो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि मनस्वी ने हमारा नाम लिया. मतलब आप सभी दोस्तों को प्यार करते होंगे, आप सभी दोस्त अच्छे होंगे आपके, फिर भी दो चार पांच जितने भी नाम आप लेना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम.
1: यस सर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम धन्विता है, वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे. और मेरी मतलब और बहुत फ्रेंड्स है, जैसे सानविका है उसका नाम, वो सबसे ज्यादा कहती रहती है कि तुम्हारा मतलब आवाज बहुत बहुत ही अच्छा है.
0: ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल. चलिए फिर दोस्तों, किस बात की देर, हम लोग ये गीत सुनते हैं जो मनस्वी के मम्मी पापा और उनकी ये दो बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं. ये लीजिए मनस्वी की फ्रेंड्स, ये गीत मनस्वी ने आपके लिए प्रिपेयर किया, सुनते हैं.

0: ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। चलिए मनस्वी जी, अब ये बताओ आपके म्यूजिक का पैशन और बैडमिंटन, चलिए ये दो चीजें तो हैं ही, आप अपने म्यूजिक के पैशन को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो? अभी तो देखिए आप 14 इयर्स के हो, लेट्स से एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 10 साल के बाद, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन म्यूजिक? व्हाट आर योर प्लान्स?
1: सर, मैं पहले साउंड इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ।
0: ओके।
1: और फिर आईड लाइक टू डू प्लेबैक सिंगिंग, मतलब कोई रियलिटी शो में जाकर उससे कोई स्टार्ट मिल सकता है मुझे। तो वैसे, और फिर मैं अपनी ही स्टूडियो को खोलकर मैं ही खुद गाना बना के से गाना चाहती हूँ सर।
0: ओके, तो इस चीज के लिए आपको, यू आर राइट, साउंड इंजीनियरिंग पहले आपको सीखनी होगी। द सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न द कंपोजिशंस, राइट?
1: यस सर।
0: तो वो ऑलरेडी आप कर्नाटक म्यूजिक कर चुके हैं और आप हिंदुस्तानी म्यूजिक कर रहे हैं, तो राग और जो भी क्लासिकल चीजें हैं वो आपको आ जाएंगी, सरगम आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी, तो आप कंपोज करना शुरू कर सकते हैं। मजेदार वाली बात यह है दोस्तों कि मनस्वी उस एरा में है जहां पर ऑडियो इंजीनियरिंग या कॉम्पोजिशंस करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एआई, कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल है। एनीबडी हूसोएवर इज पैशनेट एंड इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कैन डू इट एट होम। दो मनस्वी हमारे साथ है, मुझे लगता है बहुत जल्द, मे बी अ ईयर और टू, हमें मनस्वी के कंपोज किए हुए और गाए हुए गीत सुनने को मिलेंगे। सेकेंडली, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि वी हैव अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इन अवर फैमिली, कैजाद पटेल मुंबई में है जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं। ही कैन ऑलवेज ऑलवेज हेल्प मनस्वी इन लर्निंग, अब क्योंकि वो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हैं, इज अ सिंगर ऑल्सो, तो ही कैन वेरी वेल हेल्प मनस्वी इन क्रिएटिंग हिज हर ओन ड्रीम कमिंग इन टू रियलिटी। ब्यूटिफुल, ऑल द वेरी बेस्ट मनस्वी, हम इंतजार करेंगे आपके साथ, आपके इस सपने को बनते हुए देखेंगे। चलिए ना, तब तक ये गीत हम सुनते हैं आपके इन सपनों के नाम।

0: ब्यूटिफुल सिंगिंग अगेन। मनस्वी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने बोला बहुत कम, ज्यादा तो मैं ही बोलता रहा लेकिन बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। तो बस अब सारा आज के कलाकार की फैमिली मेंबर को आपके दिल में जो बात है ना, सच्ची सच्ची कह दीजिए।
1: थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए कि मेरे गाए हुए गाने ऐसे दूसरों को सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू, बस उतना ही कहना चाहती
0: हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, आप लगातार हमारे साथ टच में रहेंगे, हमारे ग्रुप में रहेंगे, और जितने भी गीत आप गाएंगे प्लीज हमारे साथ शेयर करते चलना, सो दैट वी कैन नो कि मनस्वी किस स्पीड से अपने विजन की तरफ बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच मनस्वी अबाउट फॉर योर टाइम, फॉर योर थॉट्स, फॉर योर पोलाइटनेस, फॉर योर अम्बलनेस एंड फॉर योर सिंगिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर।
1: थैंक यू सर।

चल। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष।